नमस्कार, FM बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी जलंधर दे रेनबो चैनल तो बोल रहे हैं। आज दिन बुधवार शक संवत 1948 दे ज्येष्ठ महीने दी 27 तारीख है। तद अनुसार ईस्वी सन 2026 दे जून महीने दी 17 तारीख है। इस वेले सवेर दे 5:58 मिनट हो रहे ने। साढ़े अज दी सभा दे प्रोग्राम हुण शुरू हुंदे ने।

0: हरी अनंत हरी कथा अनंता, हरी अनंत हरी कथा अनंता, कहे सुने बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगे जाहे न गाए, जाहे न गाए।
1: सीता और लक्ष्मण के साथ गंगा के तट पर पहुंचते हैं। वहां केवट से गंगा को पार कराने के लिए अनुनय करते हैं। विस्मित नयनों से केवट श्री राम को निहारते हुए विनती करते हैं, प्रभु तुम तो जग के खेवनहार हो, तुम्हें कौन पार लगाए।

नानक दुखिया सब संसार, नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिन नाम आधार।

FM बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज़ से हुणे तुसी सरवन कर रहे सी भक्ति रस दे नाल भरपूर प्रोग्राम वंदना। 7 बज रहे ने और वेला हो रहा है FM न्यूज़ हेडलाइंस का।

बिल्कुल जी बिल्कुल, तुसी सुन रहे हो 102.7 FM रेनबो और प्रोग्राम चलिया है गुड मॉर्निंग जलंधर। हुणे गल कर रहे सी असीं कि किसी खास दिन नूं मनाउण दा मकसद हुंदा उस दे प्रति जागरूकता लैके आउंदा। और एक दिन होर है जो असीं खास मनाउणे आ, लेकिन मैं उस दे बारे दस्सांगी। अक्सर टैंपरेचर चैक कर लिए बाहर, गर्मी किन्नी है, ह्यूमिडिटी किन्नी है, और छतरी लैके जाने की लोड़ है कि फिर ऐदी सर जाएगा, या सनस्क्रीन लगाने की लोड़ है कि ऐदी सर जाएगा। ਜੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਤਾਪਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਗਭਗ 31 degrees ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 42 degrees ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ਼ੰਕਾ ਹੈ। ਔਰ

या वो जन्म लेते हैं। सोचो जरा, हर घंटे हजार अते हर मिनट सैकड़े नवे चेहरे जिहड़े है इस दुनिया दे विच अपना सफर शुरू करन आउंदे ने। और दूजे पासे हर साल करीब 6 to 7 crore जिहड़े लोग ने इस दुनिया नूं अलविदा भी कह जांदे ने। यही तां है जिंदगी दा खूबसूरत चक्कर, किते खुशियां दियां किलकारियां गूंजदियां ने ते किते यादां दियां गल्लां जिहड़ियां आ उड़ जांदियां ने। हालांकि दुनिया की आबादी अजे भी बढ़ रही है, पर इसकी रफ्तार हौली हौली घट रही है क्योंकि कई देशों के विच जन्म दर जिहड़ी है वह घट रही है। तो दोस्तों जदों तुसीं इह जानकारी सुन रहे हो ना, हो सकता है कि उस वेले दुनिया विच किसी नन्ने मुन्ने बच्चियां ने अपना अखां खोलियां होण ते अपनी किलकारियां की आवाज़ गुंजाई होवे। ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਹਿਸਾਸ ਨੇ ਨਾ, ਹਰ ਪਲ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। और ये कहानी ये चक्कर जिहड़ा आ इसी तरह चलता रहिंदा है और चलता भी रहेगा। बिल्कुल जी, इस तरह दियां होर भी दिलचस्प गल्लां जिहड़ियां आ मेरे कोल है, जे तुसीं सुनियां ना ना तो फिर जुड़े रहना पएगा। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, किसके साथ? अरे 102.7 मेगाहर्ट्ज़ नाल जुड़े रहो ना।

बिल्कुल जी बिल्कुल, आकाशवाणी दीक से दो शरिया सतना घर से विला हो रहा है प्रोग्राम अड्डी टप्पा दा, ते आओ इस सफर दा आगाज करने इस खूबसूरत गीत नाल।

तुझे कितना चाहने लगे हम। जी जे किसी नु जान लग गया तो फिर रब दा शुकराना करना भी तो बनता है ना कि सानू इन्ना प्यारा साथी दिता है। जी गल कर रही हाँ थैंक्स थैरेपी दी। दोस्तों जिंदगी दे विच थैंक्स थैरेपी नु अपनाना बहुत ही जरूरी है। जी एक थैरेपी है जदों असी हर समय परमात्मा का शुकराना करते हाँ थैंक्स करते हाँ कि जो सानू दिता है बहुत ही वधिया दिता है ते जो सानू मिलेगा वह भी साड़ी भलाई लई होएगा ते फिर असी सैटिस्फाइड रहने हाँ ते जदों सैटिस्फाइड रहने हाँ ते फिर सब कुछ ठीक ठाक रहिंदा साडा शरीर भी ठीक साडा दिमाग भी ठीक ते असी भी ठीक। सो थैंक्स थैरेपी नू अपनाना बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये नाल कंटेंटमेंट आएगी ये नाल हैप्पीनेस आएगी और हैप्पीनेस ही तो है जो लाइफ दे विच बहुत जरूरी है सब तो जरूरी है। सो थैंक्स हमेशा करते रहना चाहिए जो है बहुत वधिया है तो जो आएगा बहुत वधिया ही आएगा क्योंकि देन वाला जो है वो बहुत ही महान है। सो थैंक्स हमेशा करते रहना शुक्राना हमेशा करते रहना करके देखना फिर इदा लगेगा कि मन सच्ची बहुत हल्का हो गया असी तो बहुत ही अमीर हाँ साढ़े कोल तो बहुत कुछ है क्योंकि बहुत लोग ऐसे ने जिन्हां कोल वो नहीं है जो साढ़े कोल है। सो थैंक्स हर पल लई थैंक्स हर खुशी लई थैंक्स हर लम्हे दे लई करना बहुत ही जरूरी है। ते प्रोग्राम दे विच जे असीं थैंक्स की गल कीती है ते फिर गीत भी थैंक्स वाला सुनना बहुत जरूरी है। ते चलो जी मोहित चौहान दी आवाज़ दे विच गीत इंजॉय करते हैं रब का शुकराना।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित यह रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।

प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हो जी। गीत बहार, गीत बहार दे विच दोस्तों हुण समा हो गया है तुहानू बाय बाय कहंदा फिर नहीं अजे नहीं जा रही, अजे भी 5-6 मिनट पए ने आप, और ए 5-6 मिनट नू असी पूरी तरह यूटिलाइज करांगे, गल्लां बातां भी करांगे ते गीत भी एंजॉय करांगे। और

मुफ्त कानूनी मदद टैली लॉ दी ऐप वेबसाइट www.tally-law.in या टोल फ्री नंबर 1-44-54 तो प्राप्त की जा सकती है। एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज़ ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in। इंग्लैंड की धरती ते भारत दियां तियां तैयार ने T20 महिला विश्व कप जीतण दे लई। आकाशवाणी जलंधर तो सुनो ICC T20 महिला विश्व कप दे मुकाबलियां दी पल पल दी खबर। भारत दे सारे मुकाबलियां दा ते सेमीफाइनल ते फाइनल मुकाबलियां दा अखी वेख्या हाल तुसी सुन सकोगे आकाशवाणी जलंधर दे FM रेनबो चैनल तो 102.7 MHz ते।

एंजॉय कर रहे हो जी 102.7 एफएम रेनबो ते प्रोग्राम चल रहे होम स्वीट होम तेला जी होम स्वीट होम दे विच एक होर इंपॉर्टेंट गल मैं लेके तुहाडे लई हाजिर हुई हाँ जी। वो ये है कि आपा अक्सर बच्चों को कहने कि केला बहुत इंपॉर्टेंट है, केला खाओ, बनाना बहुत शरीर को ताकत देता है, नो डाउट बहुत अच्छा फूड है, ईवन कि अपने आप में कंप्लीट फूड होता है बनाना, और बनाना खाने के सानू इंस्टेंट एनर्जी भी मिल जाती है। सो केला ऊर्जा पोटाशियम और फाइबर का चंगा स्रोत है, और ज़्यादातर सवेर के टाइम ते एक्सरसाइज करन तो बाद सलाह दी जाती है कि हुन केला खादा जाए। पर दोस्तों कई लोग केले के इन्ने शौकीन होंगे है कि रात को भी परहेज नहीं करते, रात को केला खाना शुरू कर देंगे ने, पर नहीं, केला खाने का भी टाइम है, दिन के टाइम पर खाओ, सवेर के टाइम पर खाओ, पर रात को केला नहीं खाना। क्यों नहीं खाना वो मैं दसदी हाँ, क्योंकि केला रात नूं खाण दे नाल एक तां भारीपन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो सानूं डाइजेशन की भी प्रॉब्लम हो जाती है, पचदा नहीं है, पाचन संबंधी दिक्कत हो जाती है, तो सानूं इदां लगता है कि लेटे लेटे हैवीनैस हो रही है। सो इसलिए केले का जिहड़ा सेवन है असीं सवेर दे टाइम पर करना है, रात नूं केला नहीं खाना। बेशक बहुत अच्छा फूड है, पर यह फूड दिन दे वास्ते है, रात दे लई ए नहीं है। नोट कर लिया जी, बिल्कुल नोट करके रखो, केला खाना है रोज़ खाओ, पर सवेर के टाइम पर खाओ, राती ना खाओ। तो लो जी, प्रोग्राम नूं अगे दौरदे हां ते इंजॉय करदे हां गीत गुरनाम भुल्लर दी आवाज़ दे विच।

प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हो जी, होम स्वीट होम। तो दोस्तों होम स्वीट होम का जोड़ा दायरा है ना वो बहुत व्डा है। ये गल सिर्फ साड़ी सेहत की या साडे घर की नहीं की जाती, बल्कि साढ़े आस पास की भी की जाती है, जिदे नाल असी डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरह रिलेटिड हाँ। हर मुद्दा हर विशा असी ये लैके आने। सो गल करते हाँ दोस्तों स्वस्थ पौद्या की। जेकर साडे घर की बागबानी है जी वो खिली खिली होएगी तो घर फिर होर भी सोहना लगता। तो किवें अपने पौद्यां दा ध्यान रखना, किवें अपनी जिहड़ी बागबानी है वो खिली खिली रखनी है, उहदे बारे असीं गल करांगे। दोस्तों की होंदा है कि कई बारी ना पौद्यां दी जिहड़ी ग्रोथ है वो घट जांदी है, तो हौली हौली धीमी हो जाती है, फुल घट आते हैं जे, या फलों वाला है तो फल घट आते हैं। तो असीं की करते हैं, असीं उहदे विच बाज़ारों लिया के खादा वगैरह मिलाने हाँ, तो आर्टिफिशियल असी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं ग्रोथ नूं वधाउण लई। पर नहीं, जेकर असी कुदरती तरीके नाल प्रकृतिक तरीके नाल टॉनिक तैयार करके इन पौद्यां दे विच पाइए तो उहदा बहुत फायदा होएगा, क्योंकि जिहड़े असी आर्टिफिशियल चीज़ां पाने उहदे नाल एक वारी तां ग्रोथ नज़र आती है पर वह अल्टीमेटली नुकसानदायक हुंदा है। तो जेकर असी नैचुरल वे दे नाल ग्रोथ ते फोकस करांगे तो इहदे नाल मिट्टी है जिहड़ी वह भी न्यूट्रिएंट्स वाली हो जाएगी, तो पौधे का जिहड़ा वाधा है वह भी चंगी तरह होएगा। सो मैं अज दसन जा रही कि किवें तुसी नैचुरल वे दे नाल घर दे विच ये टॉनिक तैयार कर सकते हो जिहदे नाल कि पौद्यां दी जिहड़ी ग्रोथ है वह अच्छी होएगी। और पहला जिहड़ा मैं घोल दसन लगी हाँ जी वह है तरबूज ते एलोवेरा दा। तरबूज एलोवेरा टॉनिक है। एक तुसी किवें तैयार करना, 5 लीटर पानी लैना, 5 लीटर पानी दे विच 500 ग्राम छोटे छोटे कटे हुए तरबूज दे छिलके पाने हैं। 5 लीटर पानी ते 500 ग्राम छोटे छोटे कटे हुए तरबूज दे छिलके ते 300 ग्राम कटे हुए केले दे छिलके ते 200 ग्राम कटी हुई एलोवेरा दी पत्तियां ऐ असी पा लैनी है। मैं एक बार फिर रिपीट कर दी हाँ, असी 5 लीटर पानी लैना, उहदे विच 500 ग्राम असी पाने हैं तरबूज दे छिलके छोटे छोटे कट के, 300 ग्राम असी पाने हैं केले दे छिलके ते 200 ग्राम एलोवेरा दीयां पत्तियां असी उहदे विच पा देनी है। इसनू बाल्टी च पा के ते तुसी ढक के छां वाली जगह ते रख देना, 3 दिन लई रखना। दिन च एक बारी छड़ी दे नाल सोटी दे नाल एक घोल तुसी घुमा देना ते फिर इनू कज के टक के इस तरह रख देना। 3 दिन बाद घोल दी सतह ते तुसी देखोगे कि हल्की हल्की सफेद कलर दी ना परत दिखाई देन लग गई है, ते घोल दे विचों थोड़ी थोड़ी जी स्मेल गंध आन लग पई है, ते मतलब घोल तुहाडा रेडी है। हुण इसनू छान लैना तां कि छिलके छिलके जे निकल जाण। घोल साडा रेडी हो गया, ते हुण एक भाग घोल दे विच 10 भाग असी पानी मिला के इनू पतला कर लैना। ते हुण 12 इंच दा जेकर साडा गमला हैगा, 12 इंच गमले दे विच इस पतले

तू है तो गाता है दिल जी। एंजॉय करो प्रोग्राम मीठे मेलोडीज ते। आज मीठे मेलोडीज दे विच गलबात का विषय सफर और हम सफर। सचमुच जदों कोई खास इंसान जिंदगी विच आउंदा है तां दिल अपने आप ही गुनगुनाउण लग पैंदा है। दोस्तों कई बार सफर विच हम सफर नाल थोड़ी नोक चोक थोड़ा जिहा रुसना मनाउणा इह वी तां जरूरी है ना। 60 दे दहाके दी गल करी तां फिल्म आन मिलो सजना दा इक अजिहा गीत जो अज भी जदों कोई अलविदा कहिंदा है तां सब दे सहन विच आउंदा है। पर इस अलविदा विच जुदाई नहीं बल्कि बहुत सारा प्यार है। लता जी ते किशोर कुमार जी दी आवाज़ दे विच गीत एंजॉय करते हैं। अच्छा तो हम चलते हैं।

अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे? दोस्तों मासूमियत ए अंदाज सिर्फ साढ़े बॉलीवुड दे गोल्डन एरा विच ही मिल सकता है। तुसी सुन रहे हो मिट्टी मेलोडीज। ते हुण चलते हाँ 80 दे दहाके वाल, जदों सफ़र लंबा होवे, बदल गरज रहे होण ते मीह दियां बूंदा पै रही होण। अजिहे मौसम विच हम सफ़र नाल लोंग ड्राइव ते जाण दा मज़ा ही कुछ होर है। फिल्म शक्ति दा गीत जिस विच अमिताभ बच्चन ते रति अग्निहोत्री ने रोमांस की एक नवी मिसाल कायम की सी। आर डी बर्मन साहब का संगीत, किशोर दादा ते लता जी की आवाज़ पेश है। जाने कैसे कब कहाँ इकरार हो गया।

जाने कब कैसे इकरार हो गया। दोस्तों, जदों भी कोई नवा नवा हम सफ़र जिंदगी में आता है तो सफ़र की शुरुआत बड़ी मासूम तो सुपनिया वर्गी होंगी है। 80 के दहाके की शुरुआत में फिल्म बेताब नाल दो नवे सितारिया ने बॉलीवुड में कदम रखा। सनी देओल ते अमृता सिंह घोड़िया ते सवार पहाड़ा के खूबसूरत रस्ते ते लता जी ते शबीर कुमार की खूबसूरत आवाज़। आओ सुनते हैं मिड डे मेलोडीज़ का अगला गीत, जब हम जवां होंगे।

बहुत ही खूबसूरत गीत। जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, पर जहाँ भी होंगे तुझे याद करेंगे। सचमुच कुछ सफ़र अजिहे होंगे ने जो ख़त्म हो के भी साड़ियाँ यादों विच हमेशा जिंदा रहते हैं। तो चलो यादों के सफ़र नूं थोड़ा नटखट ते शरारती बनाने। 70 के दहाके विच सुपरस्टार राजेश खन्ना का एक वक्रा ही दौर सी। फिल्म रोटी का एक अजिहा गीत जिथे हम सफ़र नूं प्यार नाल चेतावनी दिती जा रही है, ते वह भी बड़े ही मज़ेदार अंदाज दे विच। लक्ष्मीकांत प्यारे लाल जी का संगीत ते किशोर दादा ते लता जी की आवाज़ सुनदियां गीत गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर।

0: कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
1: मध्य प्रदेश के उज्जैन विच महाकाल लोक प्रोजेक्ट का पहला पड़ाव अक्टूबर 2022 विच राष्ट्र नु समर्पित किया गया सी। प्रोजेक्ट की कुल लागत करीब 850 करोड़ रुपए है। वाराणसी विच दिसंबर 2021 विच उद्घाटन किए गए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने पवित्र काशी विश्वनाथ मंदिर नु गंगा दरिया नाल सीधा जोड़ के तीर्थ यात्रा दे अनुभव नु बदल दिता है। ये परिवर्तनशील पहलकदमियां भविख नु विश्वास नाल अपनाउंदे होए अपनिया सभ्याचारक जड़ां नु सुरक्षित रखने लई देश दी वचनबद्ध दर्शाउंदियां ने। ब्यूरो रिपोर्ट नाल मैं सरबजीत कौर, आकाशवाणी खबरां, जलंधर।
2: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पिछले 12 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने नागरिकों की सुरक्षा ते दुश्मन की तबाही लई मजबूत सुरक्षा ढांचा बनाया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक, हवाई हमले ते ऑपरेशन संदूर राही सरहद पारों दुश्मनों को करारा जवाब दिता है। उन्हां धारा 370 हटाउण अते नक्सलवाद का खात्मा करन दा भी जिक्र किया। श्री शाह ने उत्तर पूर्व विच 12 तो वध समझौतियां नाल अंदरूनी सुरक्षा नूं मजबूत करन दी भारत दी वचनबद्धता नूं दोहराया है। राष्ट्रीय महिला कमिशन के चेयरपर्सन विजय राहतकर ने खुलासा किया है कि पिछले कई सालों में पंजाब विच NRI पतियां वालों लगभग 32,000 औरतों को छोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि सूबे में NRI विआह धोखाधड़ियों की चुनौती बढ़ रही है। कल रोपड़ में जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों नाल औरतों को दरपेश समस्यावां अते उन्हां नूं दित्ती जा रही प्रशासकी ते पुलिस सहायता बारे समीक्षा मीटिंगां करते हुए उन्होंने छड़ियां गईयां औरतों के इन अंकड़ों का हवाला दिता। उन्होंने इन्होंने औरतों की सहायता लिए तेज़ जांच, बेहतर अंतर एजेंसी तालमेल और समय सिर कानूनी दखलअंदाजी की मांग की। पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने MLA होस्टल तो विरासती फर्नीचर की अमरीका च कथित नीलामी बारे चंडीगढ़ प्रशासन तो वेरवे सहित रिपोर्ट मंगी है। विरासती वस्तुओं के कस्टोडियन बारे पता लाने लई संबंधित अधिकारियों एक उच्च पदरी मीटिंग की गई। इस मामले का गंभीर नोटिस लेंद्या स्पीकर ने कहा कि सख्त जवाबदेही तय की जाएगी और जिम्मेवार व्यक्तियों विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। यह कदम इन्ह मीडिया रिपोर्टों तो बाद चुकया गया कि चंडीगढ़ के MLA होस्टल तो विरासती कुर्सियों की एक जोड़ी और 4 स्टूलों की 4 जून शिकागो में 72,720 अमरीकी डालर में नीलामी की गई सी, जिसकी कीमत 59 लाख रुपए तो वध है। ICC महिला 2020 विश्व कप क्रिकेट में अज भारत का नीदरलैंड नाल मुकाबला होगा। यह मैच बरतानिया के लीड्स में शामी 7 बजे शुरू होगा। भारत ने अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 64 तोड़ों हराया सी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने अज सवेरे अलजीरिया 3-0 हरा दिता। लियोनल मैसी ने इस मैच में 3 गोल करके हैट्रिक बनाई। उसने विश्व कप में 16 गोलों सब तो वध गोल करन दे जर्मनी दे मिरोस्लाव क्लोज़ दा रिकॉर्ड दी बराबरी कर ली है। अज सवेरे एक होर मैच में नॉर्वे ने अमरीका दे बोस्टन स्टेडियम में ग्रुप एक दे अपने पहले मैच में इराक नूं 4-1 नाल हराया। अज खेडे गए एक होर मैच में ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन नूं 3-1 नाल हरा दिता है। बीती रात फ्रांस ने न्यू जर्सी में सैनेगल नूं 3-1 नाल मात दी। अंत में चोणवीआं खबरां एक बार फिर सुन लो। G7 शिखर सम्मेलन दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप नाल मुलाकात करनगे। श्री मोदी ने कहा कि पिछले दहाके विच भारत दीआं रक्षा समर्थावां विच महत्वपूर्ण तब्दीली आई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वित्तीय साल 2025-26 विच भारत दा सालाना रक्षा उत्पादन 178,000 करोड़ रुपए के सब तो उच्चे पद्धर ते पहुँच गया है। ICC महिला 2020 विश्व कप क्रिकेट मैच में अज भारत दा नीदरलैंड नाल मुकाबला होगा। इस दे नाल ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुंदा है। नमस्कार।

दोस्तों प्रोग्राम चल रहा है दिला शायर है, तो मैं थोड़ा अपना आरजे दोस्त रमनीश। स्रोतिया ने सानू किन्ना कुछ भेज दिता है, लाइक हर स्रोत ने अपनी अपनी लिखती रूप से ना बहुत कुछ भेज दिता है। तो चलो शुरू कर दें दोस्तों। वेल दोस्तों प्रोग्राम पहला दसदा कि

चल रहा दिला शायर है एंड ए प्रोग्राम जिहड़ा चलेगा सिर्फ अद्धे घंटे लिए चलेगा जो कि 2:30 ते उस तो बाद आवेगा साडा प्रोग्राम उमंग जो कि दिल्ली तो प्रसारित होवेगा। उस तो पहला गल करदे आं साडे सरोतिया दी शायरी बारे। वैल गुड आफ्टरनून रमनी सर कुलविंदर टेलर VPO कंडोला नियर आदमपुर तो लिख रहे ने कि हर कली खिलकर गुलाब नहीं होती, हर प्याले में शराब नहीं होती, झूठी उम्मीद पर ताजमहल बनाने वालों, झूठी उम्मीद पर ताजमहल बनाने वालों, हर महबूबा मुमताज नहीं होती। क्या बात है जी, वाह क्या बात है जी, कुलविंदर जी कमाल ही करती, कमाल ही करती। उस तो बाद साडे बहुत ही प्यारे राम स्वरूप अरोड़ा चौंक चिल्लिया सुल्तानपुर लोधी तो लिखा ने कि नमस्कार रमनीत सर आफ्टर लवली एंड स्वीट वेट वेलकम इन शो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वाल दो फोटो भेजिया अपना राम स्वरूप जी ने दे की लिखा है। लिख रहे ने कि दिल को समझाया समझ गया, तरके ताल्लुक हो भी गया, कमबख्त नजर को क्या कहिए, कमबख्त नजर को क्या कहिए, हर बार उधर ही हो जाती है। क्या बात है जी। एक बार एक और भेजी इन्होंने, लेकिन देने कि इस बात को बीते जमाना गुजरा, एक बात से तकलीफ मुझे होती है, इस बात को बीते जमाना गुजरा, इस एक बात से तकलीफ मुझे होती है कि गई जिनके लिए तरके तालुक मुंह से, पा लिया उस अब मेरे लिए रोती है। देखो जी साढ़े स्रोत कई होंगे ना, आप कहें ना अपनी हैंडराइटिंग स्रोतिया की बड़ी कमाल की होंगी। वैसे साढ़े अब जो डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग होंगी ना, साढ़े राम स्वरूप जी भी बड़े कमाल की दर असल पता लगता है कि एक शायर ने लिखा होंगे ना, जिदा आया है लिखना पसंद करते हैं उस लहजे ने लिखा है। बहुत ही कमाल राम स्वरूप जी, कमाल करती तुसी एंड बहुत बहुत धन्यवाद, तुसी हर वेले इन्ना ज़्यादा प्यार देंदे हो सानू। उस तो बाद मेन बाजार पिंड चौके जिला बठिंडा तो बसंत सिंह टेलर बेटा नवदीप सिंह जस्सल, ओके जी, लिख रहे ने कि हर पल बैठा रहा सामने, तेनू तकिया दिल ना भरदा है, तेनू अखा विच वसा के पलका बंद करा, दिल सच्ची मेरा ओए करदा है, तेरे बाजू तक्का होर कोई, दिल मेरा ना हामी यह भरदा है, जिवें काजी नू राम सीता वाली, जिवें काजी नू राम सीता वाली, उंज रस्ता मैनू तेरे घर है, यह अमानत है सदा तेरी, यह अमानत है सदा तेरी, जस्सल सिर तेरे कदमा वे दे विच तरता है। क्या बात है जी, क्या बात। साढ़े बसंत सिंह टेलर जी ने लिख के भेजे, बहुत सोहना बसंत जी, कमाल करती बसंत सिंह टेलर, वाह अलग ही नाम है थोड़ा बसंत सिंह। उत्तवाद है सत श्रीकाल दिल शायर रमनीश जी बलविंदर सारा पिंड मोरजंड सिखा हनुमानगढ़ तो लिख देने कि कुछ एहसासों के साए दिल को छू जाते हैं, कुछ एहसासों के साए दिल को छू जाते हैं, कुछ मंजर दिल में उतर जाते हैं, बेजान गुलसन में भी फूल खिल जाते हैं, बेजान गुलसन में भी फूल खिल जाते हैं, जब जिंदगी में आप जैसे दोस्त मिल जाते हैं। आए क्या बात है, खुश करता जी। देखो जी क्या कमाल दी होंदी ना, देखो जो तुसी नोट किया होना दोस्तों, जो आप शायरी पढ़ते हैं किसी की भी सुनते भी है ना, तो की होंगे ना पहला नॉर्मल कई वे बस सुनते होंगे, तो कई वे लाइन इदा ही ना अनोखे जी आते ना, जी चेहरे की मुस्कान लिया देंगे, क्या बात है जी, जिदा ना अस शर्मा जाने होंगे कुछ उदा तरीके, क्या बात है जी, कमाल करती जी अपने बलविंदर सरा जी, कमाल जी। उस तो बाद एक सरोतिया ने सानू भेजी, गुड आफ्टरनून सर।

दोस्तों प्रोग्राम चल रहा दिल आज शायर है तो मैं थोड़ा अपना अर्ज तो सुरमनीश साडे जरूरते थानू सानू धन्नवाद भी कह रहे हैं कि तुसी इन्नी इन्नी प्यारी प्यारी सोहनिया सोहनिया शायरियां पढ़िया। वैल थोड़ा धन्नवाद सारे सरोतिया नू जिन्होंने इन्नी प्यारी प्यारी शायरियां भेजिया। उतवा साडे दोस्त पवन कुमार पिंड प्याला तो लिख रहे ने कि बंदिया जे कोई तेनू बुरा बना के आप चंगा बनता है, बंदिया जे तेनू कोई बुरा बना के आप चंगा बनता है तो तू गुस्से च आके ना उसनू माड़ा ना बोली, आए जे तू सच्चा है तते जे तू सच्चा है तेरा बग्गे तेरा रोना भी ना उसनू दबोगा। ओके

क्या बात है सुरोत, क्या बात है दोस्तों। प्रोग्राम चल रहा है दिलास शायर है, तो बस कुछ ही मिनट्स का साडा प्रोग्राम रह गया। वैल उस तो पहला थानू एक प्यारी जी गलबात करदा शायरी बारे। कहिंदे ना उड़ीका दी सलीब उत्ते टंग्या मैं, हर सां तेरा नाम चपदा मैं। तू ना आया पर तेरा इंतजार आया, मेरे दिल दे वेड़े च चन्न तारे लियाया। दोस्तों इश्क च ना उड़ीक सजा नहीं है, इबादत बन जाती है। जदों महबूब नहीं हुंदी या नहीं आउंदा, उहदा इंतजार ही साडा महबूब बन जाता है।

तो आइए जानते हैं आज हम किस झील की चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि आज का विषय बहुत रोचक होने जा रहा है। आज हम एक ऐसी झील के बारे में बात करेंगे जिसे बहुत ही रहस्यमय और पवित्र माना जाता है। श्रोताओं, जरा अंदाजा लगाइए मैं किस झील की बात कर रहा हूँ। आपको संकेत तो मिल ही गया होगा कि वो झील रहस्यमय भी मानी जाती है और पवित्र भी। जी हाँ श्रोताओं, यदि आपके मन में मानसरोवर झील का नाम है तो आपने बिल्कुल सही सोचा है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि यह दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झीलों में से एक है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4,590 मीटर है और इसका क्षेत्रफल करीब 320 वर्ग किलोमीटर है। आइए अब जानते हैं कि यह झील है कहाँ। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि यह झील तिब्बत और चीन के पर्वतीय क्षेत्र में पड़ती है। इसका सबसे निकटतम पर्वत है कैलाश पर्वत। आपको यह भी बता दें कि भारत की ओर से कैलाश मानसरोवर की यात्रा उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे या सिक्किम के नाथुला पास से की जाती है। यदि भौगोलिक दृष्टि से देखें तो इसके निर्माण का कारण है भारतीय और यूरेशियन प्लेट की टक्कर। इस टक्कर के कारण भूमि ऊपर उठी, पर्वतों में दरारें और बड़े बड़े गड्ढे बने जिससे हिमनदों का पानी जमा हो गया। इसीलिए मानसरोवर झील को टेक्टोनिक झील भी कहते हैं। अब एक बहुत ही रोचक तथ्य आपके साथ मैं साझा करना चाहता हूँ। अभी आपने सुना कि ये मीठे पानी की झील है, लेकिन श्रोताओं, इसी झील के बिल्कुल पास एक और झील है जिसका पानी खारा है। इसे राक्षस ताल कहते हैं। ये एक बंद झील है। जल के निकास और वाष्पीकरण की भिन्न प्रक्रियाओं के कारण यहाँ का पानी खारा है, क्योंकि यहाँ का पानी वाष्पित होता रहता है जिसके कारण लवण और अन्य खनिज इसी में रह जाते हैं। दोनों सरोवरों को कैलाश पर्वत, हिमनदों और वर्षा से ही जल मिलता है। एक छोटी नदी इन दोनों सरोवरों को आपस में जोड़ती है जिसे गंगा चू नदी कहते हैं। तिब्बती भाषा में नदी या जलधारा को चू कहते हैं। जी हाँ, सचमुच ये बड़ी अनूठी बात है श्रोताओं। आइए अब सुनते हैं एक और बड़ी रोचक बात इस झील के बारे में। वहां गए यात्रियों के अनुसार मानसरोवर झील रंग बदलने वाली झील है। सूर्योदय के समय ये नीले और हरे रंग की दिखाई देती है, लेकिन सूर्यास्त के समय इस झील का रंग सुनहरी आभा में बदलता हुआ दिखाई देता है। आपको एक और बात बता दें कि मानसरोवर झील सर्दियों में पूरी तरह से जम जाती है। जहां तक धर्मों की बात है, ये झील हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म में विशेष स्थान रखती है। श्रोताओं, एक और बड़ी खास बात, मानसरोवर झील को कैलाश पर्वत का दर्पण भी कहा जाता है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों। जी, इसका उत्तर है मानसरोवर झील में पास के कैलाश पर्वत का प्रतिबिंब साफ साफ दिखाई देता है, खासकर साफ और शांत मौसम में। मानसरोवर और कैलाश पर्वत क्षेत्र से सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र नदियां निकलती हैं। बौद्ध धर्म में मानसरोवर झील को मापाम युमत्सो कहते हैं, जबकि जैन मान्यता में इस झील को ऋषभ देव से जोड़ा जाता है जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। आइए बात करते हैं इस झील में पाए जाने वाले जलीय जीवों की। तो श्रोताओं, यहाँ ठंडी जलवायु और दुर्गम परिस्थितियों के कारण जैव विविधता सीमित है, फिर भी कुछ अनुकूलित जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं। इस झील में मछलियों की बड़ी अच्छी मात्रा है। पानी इतना साफ है कि अंदर तैरती हुई मछलियां भी 14 मीटर की गहराई तक करीब करीब साफ साफ दिखाई पड़ती हैं। यद्यपि मान्यताओं के कारण यहाँ मछली पकड़ना या मारना निषिद्ध है। ये झील पर्वतीय पक्षियों और पशुओं के लिए एक आदर्श ठिकाना है। दुर्लभ प्रजाति के हंस, ब्राह्मणी बतख और पहाड़ी कौवे यहाँ मिलते हैं। जहाँ तक पशुओं की बात है, छोटे तिब्बती गधे और दुर्लभ प्रजाति के याक भी यहाँ मिलते हैं। तो श्रोताओं, अब करते हैं आज की चर्चा को समाप्त, लेकिन जाते जाते एक और रोचक तथ्य आपके साथ साझा करता हूँ। मानसरोवर झील जीवन से भरपूर है। यहाँ पशु पक्षी और दुर्लभ वनस्पतियाँ प्रचुरता से मिलती हैं, लेकिन पास के राक्षस ताल में खारे पानी के कारण लगभग कोई मछली या जलीय वनस्पति नहीं होती। इसीलिए लोक मान्यता में मानसरोवर झील को अच्छाई और राक्षस ताल को बुराई का प्रतीक माना जाता है। कुल मिलाकर मानसरोवर न केवल अध्यात्म और आस्था का केंद्र है, लेकिन ये ऊंचे दुर्गम स्थान की पारिस्थितिकी तंत्र का भी बेजोड़ उदाहरण है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी मानसरोवर झील की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो प्रश्न है, मानसरोवर झील के बहुत पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, मानसरोवर झील के बहुत पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है। आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। तो श्रोताओं, ये थी रोचक जानकारी मानसरोवर झील की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, मानसरोवर

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार कीजिए स्वीकार। करते हैं शुरू एक सुंदर विचार से जिसे हमें भेजा है छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल जी ने।
2: लिखते हैं, सकारात्मक सोच हर समस्या में समाधान खोज लेती है।
3: वाह, बहुत सुंदर विचार। आपके इस विचार से सच में हम सबको प्रेरणा मिलती है। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी का।
2: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम और सेजल साहू।
3: और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास।
2: छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
3: एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। तो जैसा कि हमने कहा था, इस सप्ताह हम बात करेंगे कुछ अनूठी झीलों के बारे में।

0: सरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। हमारा IVRS नंबर भी नोट कर लें, 8800440559। और हाँ, आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और LinkedIn पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों और कार्यक्रमों की रोजाना की उपयोगी जानकारी मिलती रहेगी। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, आइए सुनते हैं कार्यक्रम मंगल पांडे।
1: ये कार्यक्रम अमर शहीद मंगल पांडे के जीवन और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी अहम भूमिका के बारे में एक नाटक के द्वारा सूचना देता है।
2: दादी जी।
3: अरे आशीष, दीपिका आओ आओ। कहाँ से आ रहे हो भाई, बैठो।
2: दादी जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता था।
3: हाँ पूछो।
2: ये 1857 क्या है? आजकल अखबारों में कई लेख देखे हैं।
3: ऐसा है आशीष बेटा, ये कहानी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की है। जब हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तान में बहुत बड़ा विद्रोह किया था।
2: अच्छा।
3: सभी देशवासी देश को आजाद कराने के लिए कूद पड़े थे। अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ा विद्रोह हुआ क्योंकि सभी देशवासी ईस्ट इंडिया कंपनी से देश को मुक्त कराना चाहते थे।
2: अच्छा।
3: यानी आजादी आजादी आजादी। राजे महाराजे, नवाब, किसान, मजदूर, अमीर गरीब, छोटे बड़े सभी लोग और जांबाज सैनिक अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए। उस समय हिंदुस्तान के लोगों पर एक जुनून सवार था। देश की आजादी के लिए हर व्यक्ति मर मिटने के लिए तैयार था।
4: अच्छा।
3: ऐसा ही एक जांबाज सिपाही था, मंगल पांडे।
2: मंगल पांडे।
3: 1857 के आरंभिक विद्रोहियों में से ये सबसे पहला विद्रोही था। उसने आजादी की लड़ाई में अपना बलिदान दिया।
4: अच्छा।
3: उस समय ये लड़ाई भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लड़ी जा रही थी।

0: दादी जी, लड़ाई में कौन कौन थे?
1: दीपिका, इस लड़ाई में कई नायक और नायिका थे, जैसे अवध में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब, बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अजीमुल्ला खां, तात्या टोपे और राजा कुंवर सिंह जैसे वीर योद्धा थे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी।
2: बड़े बहादुर थे ये।
1: स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई गीत भी लिखे गए।
0: दादी दादी, हमें मंगल पांडे की कहानी सुनाओ ना।
2: वो कहाँ के रहने वाले थे?
1: सुनाती हूँ। देखो बच्चों, मंगल पांडे बलिया जिले के रहने वाले थे।
2: अच्छा।
1: बचपन में उनकी माँ उन्हें देश प्रेम की कहानियाँ सुनाती थी। मंगल पांडे फौज की

0: नौकरी बहुत पसंद करते थे।
1: अच्छा।
0: वो कलकत्ता गए और बैरकपुर छावनी में सिपाही के रूप में भर्ती हो गए। और धीरे धीरे वो एक होनहार सिपाही बन गए।
2: दादी, उनकी ट्रेनिंग कहाँ हुई?
0: भाई, उनकी ट्रेनिंग हुई बैरकपुर छावनी में, और ट्रेनिंग के बाद वो सिपाही नियुक्त हो गए। फिर उन्होंने कई साल फौज की नौकरी की।
2: अच्छा दादी जी, लेकिन वो हीरो कैसे बने?
0: बेटा, उन्होंने बैरकपुर छावनी में बड़े बड़े कारनामे किए।
1: अच्छा, क्या क्या? जरा सुनाओ ना दादी।
0: सुनाती हूँ। देखो बच्चों, 25 फरवरी 1857 का दिन था। बैरकपुर छावनी के सिपाही बहुत नाराज थे।
1: ऐसा क्यों?
0: अंग्रेज गाय और सुअर की चर्बी लगा कारतूस चलवाते थे। इसके कारण हिंदू और मुसलमान दोनों ही परेशान थे। देसी सिपाही एकजुट हो गए और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत पर उतारू हो गए।
3: अरे, अब तक तो अंग्रेज हमारे देश को गुलाम बनाकर लूट रहे थे, अब वो हमारा धर्म भी भ्रष्ट करना चाहते हैं, इसीलिए कारतूसों में चर्बी लगाई गई है।
2: दादी, फिर क्या हुआ?
0: फिर दूसरे दिन खाने के लिए मेस में सभी सैनिक इकट्ठे हुए और कारतूसों की चर्चा करने लगे। सैनिक गुस्से में चूर थे। उन्हीं में से एक सैनिक बोला,
3: हमें अपने धर्म की रक्षा खुद करनी होगी।
4: खुद करनी होगी। सही कहे।
1: फिर क्या हुआ दादी?
0: फिर धीरे धीरे ये खबर देश की अन्य छावनियों में भी फैल गई। सैनिकों की बैठक पर बैठक होने लगी।
2: फिर क्या हुआ दादी?
0: सैनिकों की नाराजगी देखकर अंग्रेज मंगल पांडे वाली 19वीं देसी रेजिमेंट को तोड़ना चाहते थे।
1: अच्छा।
0: सिपाहियों को अंग्रेजों की इस चाल की भनक पड़ गई। 26 मार्च रविवार का दिन था। सैनिकों में और असंतोष बढ़ गया।
2: उसके बाद क्या हुआ?
0: बैठक के बाद बैठक हो रही थी। माहौल बहुत गर्म था। एक भरी बैठक में मंगल पांडे ने सिपाहियों को ललकारा और कहा,
5: ये गोरे भारत को गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। अब ये हमारे दीन धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं। हम उस मिट्टी में पैदा हुए हैं जिसमें महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी जैसे वीरों ने जन्म लिया। हम कदापि अपना धर्म भ्रष्ट न होने देंगे।
4: नहीं होने देंगे, बिल्कुल
5: भले ही हमें फांसी के तख्ते पर झूलना पड़े।
0: सैनिकों में गुस्सा और तनाव था, शायद कुछ होने वाला है। बच्चों, रोज की तरह परेड के मैदान में मंगल पांडे भी आया। उसका पारा बहुत गर्म था, गुस्से से चेहरा लाल था। मंगल पांडे ने अंग्रेज अफसरों की परवाह न करके परेड की लाइन से निकलकर सिपाहियों को ललकारा।
5: भाइयों, उठो, किस चिंता में पड़े हो? मैं आप लोगों को धर्म की सौगंध दिलाता हूँ। आओ, भारत माँ की आजादी के लिए इन अधर्मी अत्याचारियों पर टूट पड़ो।

0: सैनिकों में और जोश भर गया। परेड के मैदान में अंग्रेज ऑफिसर मंगल पांडे का रौद्र रूप देखकर कांप उठा। कांपते स्वर में उसने सैनिकों से कहा,
1: हम पांडे को अरेस्ट मांगते हैं।
2: मंगल पांडे
3: जिंदाबाद,
2: मंगल पांडे
3: जिंदाबाद,
2: इंकलाब
3: जिंदाबाद,
2: इंकलाब
3: जिंदाबाद।
0: तुरंत ही मंगल पांडे ने अंग्रेज ऑफिसर पर गोली दाग दी। ऑफिसर तो वहीं गिर पड़ा। गोली की आवाज सुनकर लेफ्टिनेंट वॉम आया। मंगल पांडे ने उस पर भी गोली चलाई।
4: ए मंगल पांडे, वॉच आउट।
0: सारी छावनी में खलबली मच गई।
5: उसके बाद क्या हुआ दादी?
0: उसके बाद तुरंत ही कर्नल व्हीलर आया और मंगल पांडे को अरेस्ट करने का हुक्म दिया।
1: अरेस्ट करो!
4: मंगल पांडे को किसी के हाथ नहीं लगने देंगे।
5: दादी जी, फिर क्या हुआ?
0: कर्नल व्हीलर वहां से तुरंत लौट गया। तुरंत ही जनरल हियर्स एक फौजी टुकड़ी के साथ मंगल पांडे को गिरफ्तार करने के लिए आए। मंगल पांडे ने गोरों की टुकड़ी आते देखकर अपनी बंदूक से खुद को गोली दाग ली। और मंगल पांडे जमीन पर गिर पड़ा।

0: हम पांडे को ठीक होना मांगता है, तुरंत अस्पताल भेजो।
1: उसके बाद क्या हुआ?
2: उसके बाद ठीक होने पर सैनिक अदालत में उस पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमे के समय मंगल पांडे ने छाती तानकर खुले शब्दों में कहा,
3: हाँ, मैंने अंग्रेज अफसर पर गोली दागी थी, पर मेरा उनसे किसी प्रकार का निजी द्वेष नहीं था। ये लड़ाई व्यक्ति की नहीं, राष्ट्र की है। मैं अपने देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करना चाहता हूं।
1: क्या कोई कार्रवाई हुई?
2: हाँ, क्योंकि अंग्रेज हिंदुस्तानियों में खौफ का माहौल बनाना चाहते थे, इसलिए तुरंत ही सैनिक अदालत बैठी।
4: दादी जी, सैनिक अदालत का फैसला क्या था?
2: सैनिक अदालत ने मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई। 18 अप्रैल सन 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। ये इस आंदोलन की पहली कुर्बानी थी। पूरे देश में फांसी की खबर फैल गई। भारत माता का वो सपूत था जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गया। इसके बाद आजादी की लड़ाई जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गई।
4: इसके बाद क्या हुआ दादी?
2: इस बलिदान के कारण आज सारा देश मंगल पांडे को याद करता है। उन पर फिल्में बनाई गई। लोक साहित्यकारों ने तो उन पर कई गीत भी लिखे। मंगल पांडे पर

0: सिद्ध नारायण सिंह की कविता जो भोजपुरी भाषा में लिखी है ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।
1: अच्छा।
0: इस कविता में क्रांति वीर मंगल पांडे का गौरव गान किया गया है।
2: जब संतावनी के रारी भैली वीरन के वीर पुकार भैल बलिया का मंगल पांडे के बलबेदी से ललकार भई मंगल मस्ती में चूर चलल पहला बागी मशहूर चलल गोरनी का पलटनी का आगे बलिया के बांका सूर चलल गोली के तुरंत निशान भईल जननी के भेंट परान भईल आजादी का बल बेदी पा मंगल पांडे बलिदान भईल जब संतावनी के रारी भैली वीरन के वीर पुकार भैली।
1: दादी, इस लोकगीत का अर्थ क्या है?
0: इस लोकगीत में उल्लेख है कि 57 के युद्ध में वीरों को क्रांति में शामिल होने का आह्वान किया गया।
1: अच्छा।
0: बलिया के मंगल पांडे मस्त होकर क्रांति के लिए गोरों की सेना के सामने छाती तान कर खड़े हो गए। इससे भारत की सोई हुई वीरता जाग गई, जिसने बैरकपुर की बैरकों में अंग्रेजों की सेना में खलबली मचा दी।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम मंगल पांडे और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बहादुर कशिका।
4: ये कार्यक्रम भारत के बहादुर बच्चों पर निर्मित कार्यक्रमों की श्रृंखला से लिया गया है, जिसमें एक बहादुर बच्ची कशिका के जीवन और उसकी बहादुरी को विस्तार से बताया गया है और किस प्रकार इस बहादुर बच्ची ने अपने जीवन को दांव पर लगाकर दूसरों को एक बड़ी विपत्ति से बचाया।
5: काशु बेटी, तुम और देवेंद्र नाश्ता कर लो।
6: माँ, आज तो छुट्टी है, आज भी जल्दी।
5: देखो बेटी, तुम्हारे पापा भी नाश्ता करके दुकान पर चले गए हैं। तुम लोग भी नाश्ता कर लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। मुझे बहुत सारा काम करना है और खाना भी तो बनाना है।
6: ठीक है माँ, हम नाश्ता कर लेंगे, पर देवेंद्र को तो आ जाने दो।
5: अच्छा ठीक है, देवेंद्र आ जाए तो तुम दोनों नाश्ता कर लेना, मैं पूजा करने जा रही हूँ।
6: अच्छा माँ।
7: माँ।
6: लो, देवेंद्र भी आ गया।
7: दीदी, मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही है।
5: चलो तुम दोनों नाश्ता कर लो और अब मैं पूजा के लिए जा रही हूँ, मुझे परेशान मत करना, समझे?
6: ठीक है माँ।
7: नाश्ता यही ले आओ दीदी, ठीक है? मैं यही टीवी के पास बैठकर खाऊंगा।
6: ठीक है, मैं अभी लाती हूँ।
7: ये देखो दीदी, ये मारा।
6: देवेंद्र चुप रहो, मैं भी देख रही हूँ।
7: अरे ये मारा।
6: अच्छा, तुमने दरवाजा बंद किया था या नहीं?
7: बंद कर दिया होगा, ये तो देखो।
6: याद नहीं आ रहा तो जाओ देख कर आओ। मुझे लग रहा है कि दरवाजे पर कोई है। टीवी की आवाज कम करो।
7: कोई नहीं है दीदी, ये गिरा।
5: लगता है कोई आया है। काशु बेटी, देखो दरवाजे पर कौन है।
6: अच्छा माँ, कौन? आप लोग कौन? कहिए किससे मिलना है। अरे
8: हमें अंदर आने दो।
6: अरे क्यों?
9: ए लड़की, रास्ते से हट जा।
6: क्या काम है? ठहरो ठहरो, मैं माँ को बुलाती हूँ।
8: लड़की हट।
6: माँ,
8: ये चाकू देख रही है ना?
9: ज्यादा होशियारी मत दिखा।
6: अरे
9: मैं इस बंदूक की गोली तेरी खोपड़ी के पार कर दूंगा। हट रास्ते से।
6: क्या हुआ? देखो जल्दी।
5: ये क्या है? अरे अरे, कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम लोगों को?
8: ए शोर मत मचा, जल्दी से चाबी निकालो। तुमने अभी तक चाबी नहीं निकाली।
6: हाँ, मेरी माँ को छोड़ दो।
8: ये चाकू देख रही है ना?
6: छोड़ दो, मुझे मत मारो, कुछ मत करो।
5: चाबी मुझे नहीं मालूम, याद नहीं कहाँ रखी है।
9: ये बहाने बाजी करती है, जल्दी से चाबी दे दे वरना गोली मार दूंगा।
5: अरे, अरे मेरे पास तो छोड़ो।
6: मेरी माँ को छोड़ो।
8: चुप चुप, आवाज से गाली तो यहीं ढेर कर दूंगा। चुप, आवाज नहीं।

0: सुनो सुनो, इसको उठा के दूसरे कमरे में ले चलते हैं। पकड़ो इसको, पकड़ो।
1: अब इसकी आवाज बस यही सुन पाएगी। चाबी तो हम खुद ही ढूंढ लेंगे। चलो।
2: हे भगवान, अब मैं क्या करूं?
3: देवेंद्र।
4: हाँ दीदी।
3: चोर तो उस कमरे में गए, चलो इस कमरे से फोन करते हैं।
4: अच्छा,
3: हाँ। पापा को फोन करती हूँ। देवेंद्र, तुम खिड़की से देखते रहो, ठीक है?
4: अच्छा।
3: हेलो।
5: हाँ बेटा, बोलो।
3: पापा।
5: पापा। हाँ बोलो
3: बेटा। जल्दी से घर आ जाओ पापा, चोर घुसाए हैं।
5: कौन घुसा है?
3: माँ को बहुत मार रहे हैं।
5: अच्छा तुम घबराओ नहीं। नहीं नहीं, तुम ऐसा करो, पड़ोसियों को बुलाओ, तब तक मैं आता हूँ, है? ठीक है?
3: देवेंद्र, मैं बाहर से शोर मचाती हूँ, तुम दरवाजा बंद करके यहीं बैठ जाओ।
4: अच्छा।
6: और शोर सुनकर भाटिया साहब के पड़ोसी इकट्ठे हो गए और दोनों चोरों को पकड़ लिया। लोगों ने चोरों की खूब पिटाई की। इसी बीच काशु यानी कशिका के पापा भी आ गए और पुलिस भी आ गई।
7: कितना बहादुर बच्चा है, देखो तो सही इसको, कशिका को। वाह वाह वाह, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया इस बच्चे ने।
8: आज तो हमारी जान कशिका ने बचा ली, उनके पास तो बंदूक भी थी, चाकू भी था। मैं तो डरी गई थी।
9: ऐसे बच्चे होने चाहिए,
7: देखो ना सबकी जान बच गई।
8: बहादुर है मेरी बच्ची।
6: अगले दिन कशिका की बहादुरी के चर्चे सबकी जुबान पर थे। मोहल्ले, रिश्तेदारों और स्कूल में कशिका की ही चर्चा हो रही थी। और जानते हो बच्चों, इस बहादुरी के लिए दिल्ली पुलिस की ओर से कशिका को 1,000 रुपए का इनाम और प्रमाण पत्र मिला।
10: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बहादुर कशिका, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
11: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
10: नमस्कार, नमस्कार।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
2: रेडियो डॉक्टर, नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश में। ये हमारा लाइव फोन इन प्रोग्राम जिसमें हम स्वास्थ्य से जुड़े हुए विषयों पर बात करते हैं, समस्याओं पर बात करते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है, जो विषय है, वो है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट फॉर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, जिसे स्पॉन्डिलाइसिस भी कहा जाता है। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जो एक्सपर्ट हैं वो डॉक्टर बी एस डबास हैं, जो कंसल्टेंट हैं आयुर्वेद CGHS न्यू दिल्ली में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में।
3: धन्यवाद मैडम।
2: और ये प्रोग्राम आप लाइव सुन रहे हैं 102.6 FM रेनबो पर। इसके अलावा लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से प्रसार भारती ऐप और न्यूज ऑन AIR पर भी आप हमारा ये प्रोग्राम सुन रहे हैं। तो आज अगले एक घंटे तक लगभग हम इस विषय पर बात करेंगे।

0: आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट फॉर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। हम एक सवाल से शुरुआत करते हैं डॉक्टर साहब, जब हम बात कर रहे हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की, तो सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं।
1: मैडम, इसमें ये है कि जो नेक है हमारी वो स्टिफ हो जाती है, उसकी मूवमेंट बंद हो जाती है और बड़ा सीवियर पेन होता है। धीरे धीरे वो पेन जो है हाथों की तरफ भी जाता है, कंधों की तरफ भी जाता है। तो ये तकलीफ जो है रॉन्ग पोस्चर जो हमारा है, मतलब गलत तरीके से बैठना, गलत तरीके से यूज करना, जैसे आप मोबाइल यूज करते हैं, गर्दन मोबाइल में गर्दन झुका लेते हैं और लगे रहते हैं उसमें लगातार घंटों घंटों, ऐसे ही आप कंप्यूटर पर काम करते हैं तो भी गर्दन नीचे करके काम करते रहते हैं, या इवन के हमारी महिलाएं जो सड़क पर चलती हुई हैं, हमारा ज्यादा गर्दन नीचे करके चलती हैं, तो ये सब कारण ऐसे बनते हैं कि गलत पोस्चर, रॉन्ग पोस्चर जो है हमारा इसको पैदा करता है 99% केसेज में। और ये ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं हो सकता, हम तो आयुर्वेदिक एक व्यायाम कराते हैं, साथ में कुछ दवाई देते हैं, हम पेशेंट को तुरंत 5 मिनट में हम पेशेंट को रिलीफ करा देते हैं।
0: क्या बात है,
1: हम ऑनलाइन भी करा सकते हैं यहाँ पे, अगर पेशेंट इंटरेस्टेड होंगे तो बताएं क्या इस पोजिशन खड़े हुए, ये करिए ये करिए, तो पेशेंट विल गेट रिलीफ विद इन 5 मिनट्स।
0: तो कार्यक्रम की शुरुआत में आपने चीजें बहुत आसान कर दी हैं। अक्सर हम कहते हैं कि जब आपका शोल्डर या नेक स्टिफ हो गया है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है उसकी वजह से। डॉक्टर साहब, ये हम थोड़ा समझें आपसे कि किसी भी एज में हो सकता है, किसी को भी ये समस्या हो सकती है?
1: हाँ, किसी भी एज में हो सकता है, पर जनरली रॉन्ग पोस्चर से ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी क्रिएट होती है। बाकी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हड्डियों में कुछ चेंजिंग आ जाता है, उसे भी पेन वेन होता है, पर जो लोग एक्टिव रहते हैं, यानी घूमते फिरते एक्सरसाइज वगैरह करते रहते हैं, वो फिट रहते हैं। ये जरूरी नहीं कि वो सभी को होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारा आलस्य जो है बीमारी पैदा करता है, लेजीनेस, गलत पोजीशन में लेटना, ऊंचे ऊंचे तकिया लगाना सिर के नीचे, तो सारी चीजें उनको इन्वॉल्व होती है, सब इसको बढ़ाते हैं बीमारी को।
0: जी, तो मतलब ये समस्या का निदान हमारे पास है, देखना यह कि कैसे उसका निदान हम करते हैं। और सर, अभी हमारे पास जो है मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं, लेकिन उनको भी हम शामिल करेंगे। तो दोस्तों, आप भी अगर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट फॉर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, स्टूडियो से मैं तपस्या तो हमारे डॉक्टर साहब से सवाल कर ही रही हूं, आपके भी सवाल उनको तैयार रखिएगा। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में एक अच्छा सा सॉन्ग पहले आपको सुनवाते हैं।

0: रेडियो डॉक्टर में दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट फॉर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में और हमारे साथ हैं डॉक्टर बीएस डबास जी। डॉक्टर साहब हमारे साथ कॉलर हैं, उनका सवाल लेते हैं। हेलो
1: हेलो
0: जी, आपका स्वागत है रेडियो डॉक्टर में, सवाल पूछिएगा।
1: जी मैं मोहम्मद जावेद मेरठ से बात कर रहा हूँ। मैडम मैं ये कह रहा हूँ जब हम सुबह सो के उठते हैं तो हमारी गर्दन में थोड़ा दर्द रहता है।
2: सो के उठते हैं गर्दन रहते हैं दर्द रहता है तो इसका मतलब आपका जो पोजीशन है सोने की वो ठीक नहीं है। हो सकता है आप एक साइड में गर्दन कर सोते हो, बीच में करौंट ना लेते हो सकता है आप ऊंची तकिया लगा रहे हो, है ना, उससे भी हो सकता है। हो सकता है शाम के टाइम आपने कोई ज्यादा ठंडी चीजें का सेवन किया हो, उससे भी अकड़न हो सकती है। तो ये बहुत सारी कारण हो सकते हैं इसमें, वो कौन सा कारण है तो आप बताएं क्या क्या करते हैं आप। आपको कॉन्स्टिपेशन होगा तब भी आपको पेन हो सकता है, उसमें वात का प्रकोप होता है, आपकी जो उम्र है वो भी एक फैक्टर है, अगर एज ज्यादा होती है तो वायु का प्रकोप होता है तो पेन हो सकता है।
0: डॉक्टर साहब ये हमारे पास एक मैसेज भी आया हुआ है, ये नेहा है मुंबई से, लिखती है कि मेरी एज 34 इयर्स है और मैं डेस्क का जॉब करती हूँ पिछले 10 सालों से। मेरे नेक में पेन है, शोल्डर्स में पेन है, लोअर बैक में पेन रहता है और शोल्डर्स जो है वो स्टिफ रहते हैं।
2: हाँ तो ये हो सकता है ये सर्वाइकल ही हो। आप अपना एक्सरे सीटी स्कैन एमआरआई अगर कराएं तो उसे कन्फर्म करें कि आप सर्वाइकल ही है। अगर आपको सर्वाइकल है और आप मेरी बात अभी सुन रहे हैं अच्छी तरह तो मैं आपको एक एक्सरसाइज बता सकता हूँ। आपको 5 बार आप करोगे अभी दो दो मिनट का गैप देकर तो आपको अभी रिलीफ मिलेगा। आप खुद बोलेंगे हाँ मुझे रिलीफ हो गया। देखिए अब सुनिए तरीका, आप सीधी खड़े हो जाइए। खड़े होने के बाद में दोनों हाथ सामने करिए अपने चेस्ट के सामने, हथेली नीचे रहनी चाहिए। उसके बाद में दोनों हाथ बॉडी के साथ साइड में करिए, जैसे पीटी करते हैं उसमें भी हथेली नीचे होनी चाहिए। अब दोनों हाथ जो है आपके पीठ के पीछे जाएंगे, बटक्स के ऊपर दोनों हथेली मिलाइए और उंगलियों से लॉक करिए आपस में। अब सीधी खड़ी रहिए और दोनों हाथों को नीचे खींचिए लॉक किए हुए, पूरी ताकत हाथों में डाल दीजिए। अब जब हाथ आपके खींच जाएं तब जब तक मैं ना कहूँ हाथ ढीले नहीं करने, आप गर्दन को पीछे की तरफ लीजिए, आप जितनी जा सकती है उतनी। आंखें खोल के रखना और 30 तक काउंटिंग करनी है आपको। 30 तक काउंटिंग मतलब आधे मिनट। जब आपको ये काउंटिंग 30 तक करेंगे उसके बाद में पहले गर्दन सीधी करनी है आपको, फिर हाथों को बिल्कुल धीरे धीरे ढीला करना है, साइड में वापस लाना है साइड में। यहाँ 7 तक काउंटिंग करनी है, फिर सामने लाना है, 7 तक काउंटिंग यहाँ करनी है और फिर हाथ नीचे करने हैं। उसके बाद बॉडी को रिलैक्स करना है, फिर उसके बाद आप बैठ जाइए। 2 मिनट के बाद या 5 मिनट के बाद दोबारा करिए, ऐसा आप 5 बार करो। अभी हम बैठे हैं रेडियो पे और आप अपने मुंह से बोलो कि हाँ मुझे रिलीफ हो गया है, ये फिर आप लगातार इसको करते रहिए, आप ठीक रहेंगे। पोस्चर अप, क्योंकि आपका काम ऐसा है कि इसमें चांसेस होते हैं, इसलिए सुबह शाम इसको रिपीट करते रहो, देन यू विल बी ऑल राइट। नो नीड ऑफ टू गो एनी डॉक्टर, नो नीड टू गो एनी हॉस्पिटल। और ये आपको बताऊं, जो ये लोग बाकी लोग जो कराते हैं वो कभी राइट को अंदर मुड़वाते हैं, कभी लेफ्ट को, इधर प्रेशर डालो इधर पकड़ो, ये तो सब एक अलग चीज है, मैं उसके बारे में कोई कमेंट करना नहीं चाहता। पर मैं क्योंकि जो असली रीजन है हमारा सर्वाइकल का वो गर्दन आगे झुका के काम करने का है, हम उसको रिवर्ट कर रहे हैं, यानी जो आपने गलती की है उसको सुधार रहे हैं, उससे आपका ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, हमारी गारंटी है। 99.9% पेशेंट को हम ठीक कर देते हैं, ऑनलाइन भी फोन पे ठीक कर देते हैं, आप कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हो। ओके थैंक यू,
0: बहुत बढ़िया। ये तो डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात आपने बताई कि इसमें कोई दवाई की जरूरत नहीं है और कोई साइड इफेक्ट का इशू नहीं है, आप सीधा एक्सरसाइज करके खुद अपने पोस्चर ठीक करके जो है सर्वाइकल को दूर कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। कॉलर हमारे साथ है, उनको लेते हैं अभी लाइन पर। हेलो
1: हेलो
0: जी, आपका स्वागत है रेडियो डॉक्टर में, सवाल पूछिएगा।
1: नमस्ते मैम
0: जी, नमस्कार,
1: राजकुमार बोल रहा हूँ, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ
0: जी। सवाल पूछिएगा, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आपको।
1: नमस्ते डॉक्टर साहब।
2: नमस्कार जी।
1: डॉक्टर साहब मेरा नाम 56 साल की उम्र है
2: जी
1: और ये 19 से ज्यादा महसूस हो रहा है मेरे को, मतलब
2: क्या महसूस हो रहा है,
1: मतलब ये मेरा जो है ना हाथ पैर लेफ्ट साइड का हाथ और पैर ना थोड़ा भारी था और ये उठता कम था, पहले इतना महसूस नहीं होता था, अब ज्यादा हो रहा है और मेरे को 3-4 महीने पहले ना बुखार हो गया था तो उससे ना मेरे को और ज्यादा भारीपन हो गया है, मतलब लेफ्ट साइड का हाथ पैर पे दिक्कत आई।
2: देखो अगर हाथ पैर नहीं उठ रहे थे आपको सर्वाइकल के अलावा ये फ्रोजन शोल्डर भी हो सकता है, कंधे जिसे बोलते हैं कंधे जाम है, उसके लिए भी कुछ एक्सरसाइज करनी होती है। देखिए जितनी भी जॉइंट्स की प्रॉब्लम है ये सब एक्सरसाइज करने से ठीक हो सकते हैं, दवाई तो टेम्परेरी काम करती है।
1: मैंने 3 MRI भी कराई है, मैंने जी भी बनाया।
2: क्या निकला उसमें MRI बताइए आप।
1: वो बता रहे हैं जी सर्वाइकल के गर्दन की हड्डी में नर्व करी है।
2: अगर सर्वाइकल का है तो मैंने अभी एक्सरसाइज बताई, आपने सुनी भी होगी, आप उसको करिए, आप अभी करिए, अभी हम रेडियो पे बैठे हुए हैं, आपको 5 बार करते ही आराम आ जाएगा। अगर पेन है तो देखिए सुनिए, ये तो एक्सरसाइज होगी, दूसरा अगर आपको पेन है सुनिए, दर्द नहीं है बिल्कुल, खाली स्टिफनेस है, अकड़न है ना,
0: भारीपन के
2: तो आप ये भारीपन उसमें आराम आ जाएगा ना, आप करिए इसको बस। देखिए कोई भी ठंडी चीज आपको नहीं खानी, चावल दही लस्सी मूली।

0: नींबू, फ्रिज का पानी, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, जो ठंडी चीजें हैं उनसे सारे सारे से ना अकड़न बढ़ेगी, ठीक है? तो इसलिए ठंडी और वायुवर्धक चीजें आप अवॉइड करिए, थोड़ा एक्सरसाइज करिए, और ऑयल जो है हमारे, जो है महानारायण तेल, हमारा अक्षीरबला तेल है, पंचगुण तेल है, आप उसको लगाइए और कोशिश करिए एक्सरसाइज करने की। आपकी हल्कापन भी हो जाएगा, खाने का परहेज विशेष तौर से रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि स्टिफनेस उसी आती है आपकी ठंडी चीजों से, ठीक है?
1: डॉक्टर साहब, यहाँ एक सवाल मन में आ रहा है कि आपने अभी जिक्र किया बार बार कि ठंडी चीजें नहीं खानी चाहिए। पहले आपने कहा कि शाम के वक्त नहीं खानी चाहिए, तो अब ये दिन भर में कभी भी खाने से असर हो सकता है?
0: बिल्कुल, ठंडी चीजें तो देखिए, जो भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर 98.4 डिग्री है,
1: जी
0: अगर हम ज्यादा ठंडी चीजें खाते हैं तो बॉडी के साथ मैच नहीं करता ना वो, तो क्या करता है वो ठंडा भोजन हमारे डाइजेशन को वीक कर देता है, कमजोर कर देता है, यानी जो हमारी अग्नि है शरीर की वो कम हो जाती है। अग्नि जो है हर चीज को जला देती है, पावरफुल अग्नि। तो जब अग्नि कम हो जाएगी तो मेद की वृद्धि होगी, है ना, और ये वात और कफ की वृद्धि हो जाएगी, तो उससे जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसलिए ठंडा तो भोजन या आइसक्रीम वगैरह तो हमारे हेल्थ के लिए शूट नहीं करती, पर क्योंकि अच्छी लगती है इसे लोग खा रहे हैं, पर कम से कम ओल्ड एज में थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए।
1: जी, यहाँ सवाल आपसे और लेंगे डॉक्टर साहब, लेकिन अभी यहाँ पर जो मैसेजेस आ रहे हैं उसमें से एक मैसेज हम ले लेते हैं। उमेश कुमार हैं खयाला से, आप लिखते हैं कि नमस्ते डॉक्टर साहब जी और मैडम को, मुझे बार बार चक्कर आते हैं, तो चक्कर आना क्या सर्वाइकल का लक्षण है?
0: हाँ, सर्वाइकल में चक्कर भी आ सकते हैं, सर्वाइकल में चक्कर आ सकते हैं, पर चक्कर तो और भी कई कारण से आ सकते हैं। मान लो आपका हीमोग्लोबिन कब तक चक्कर आ सकते हैं, आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है तो भी आपको चक्कर आ सकते हैं, तो चक्कर आने की बहुत वजह हो सकती है। तो ये एकदम ये कह देना कि सर्वाइकल का ही है, सर्वाइकल की तो मैंने एक्सरसाइज बताई है, इसको करिए आप, अगर सर्वाइकल से होगा तो आपको रिलीफ मिल जाएगा। ये मैंने अभी मैंने उनको बताया है, आप करके देखिए इसे। बाकी अगर आप इन्वेस्टिगेशन कराते हैं तो आपका एक्सरे है, एमआरआई है, सीटी स्कैन वगैरह करा लें, उससे कन्फर्म हो जाए सर्वाइकल है नहीं आपको, ठीक है ना? तो ये आपको करना पड़ेगा। और बाकी कोई पेन वेन है आपको, तो पेन के लिए कोई आयुर्वेदिक दवाइयाँ आती है, हमारे पुनर्वादी गूगल आता है, योगराज गूगल आता है, त्रोदशा गूगल आता है, बहुत सारी दवाइयाँ आयुर्वेद में, वो आप इस्तेमाल कर सकते हो।
1: जी, कुछ ऐसी दवाइयां जो कॉमनली कोई भी यूज कर सकता है उसके बारे में अगर आप बताना चाहें।
0: अब डिपेंड करता है मैडम, अब ये तो नहीं कि हर चीज हर आदमी इस्तेमाल कर सकता है,
1: जी
0: वो देखिए उसमें एज भी मैटर करता है, वात पित्त कफ कौन सा उसका जो दोष ज्यादा है उसको वो भी मैटर करता है, एज भी करते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसका, फिर वेट वेट वेट भी करता है, अगर बॉडी हैवी है तो डोज ज्यादा देनी पड़ेगी, अगर वीक है तो उसके हिसाब से डोज कम होगी, तो सारी कई सारी चीजें होती है जो पेशेंट के सामने बारे में पता चलता है।
1: जी, और सर अभी जैसे हम बात कर रहे हैं आज की आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या हो सकता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का, तो आयुर्वेदा में स्पेसिफिक इसके लिए कुछ, मतलब ऐसे जैसे आपने एक्सरसाइज बताई है अभी, कुछ और चीजें ऐसी हैं?
0: देखिए आयुर्वेद में हम जो है, जैसे मान लीजिए सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में थोड़ा सा स्वेलिंग आती है, तो उसके लिए हम पुनर्वादी गूगल है, मंडूरादि गूगल है, ये आप पुनर्वा मंडूर है, पुनर्वासो है, ये ऐसी चीजें दे सकते हैं। साथ में पेन के लिए हमारे पास बाम भी आता है, ऑयल भी आते हैं, तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने पीने में अगर हमें देख रहा तो अगर आवश्यक है तो हम उसके लिए लाक्षादी गूगल आता है हमारा, जो हड्डियों को मजबूत करता है, वो दे सकते हैं।
1: जी, एक डॉक्टर साहब अभी मैसेज हमारे पास आया है जिसमें नरेंद्र श्रीवास्तव हैं पटियाला से, कहते हैं गुड आफ्टरनून डॉक्टर साहब, और मैं ये कहते हैं कि मैं सीधा सोता हूं और लेफ्ट शोल्डर की तरफ गर्दन में कभी कभी तेज और कभी हल्का दर्द होता है, क्या ये सर्वाइकल हो सकता है?
0: देखिए सीधा सोने में एक्चुअली पूरे रात तो सीधा नहीं सोना चाहिए, करवट तो बदलना चाहिए आदमी को, क्योंकि एक पोजिशन में आप रहते हैं तो बॉडी जो है थोड़ा रिज हो जाती है, तो कभी सही तरीका तो ये है आप पहले सीधे सीधे लेटिए, फिर राइट को लीजिए, उसके बाद लेफ्ट को लेकर सोइए आप, तो सही जो प्रॉपर आयुर्वेद में जो तरीका बताया सोने का उसको इस्तेमाल करिए ना आप। आप एकदम क्यों ऐसे रहते हैं जैसे आदमी, अब क्या कहें, मतलब जैसे मान लीजिए कोई आदमी ऐसा एक पोजीशन में रहेगा तो खंभे की तरह हो जाएगा, तो इसलिए पोजीशन बदलना जरूरी है। और जहां पर अगर पेन है तो उसके लिए आप कोई भी आयुर्वेदिक दवाई ले सकते हैं, बहुत दवाई आती है आयुर्वेद में, पेन के लिए आते हैं, ऑयल आते हैं बहुत, तो इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा ठंडी चीज खाने का अवॉइड करिए आप।
1: जी, आज हम दोस्तों बात कर रहे हैं रीडो डॉक्टर में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट फॉर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में, तो स्पॉन्डिलाइटिस की जो हम बात कर रहे हैं, सर्वाइकल की बात कर रहे हैं, इससे संबंधित आपकी कोई भी समस्या या प्रश्न हो डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, तो डॉक्टर बीएस डबास जी से हम आपका वो जो सवाल है उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको एक अच्छा सा सॉन्ग सुनवाते हैं।

0: रेडियो डॉक्टर सुन रहे हैं आप और आज इसमें हम बात कर रहे हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट फॉर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। हमारे साथ हैं एक्सपर्ट डॉक्टर बी एस डबास जी। हमारे अगले कॉलर हमारे साथ हैं, देखते हैं कौन है लाइन पर। हेलो।
1: हाँ जी, हेलो
0: जी, नमस्कार, स्वागत है आपका रेडियो डॉक्टर में।
1: हाँ जी, मैं हरपाल सिंह सैनी बोल रहा हूँ, गाँव सोनपुर से।
0: जी जी, सवाल पूछिएगा।
1: सवाल तो मेरा यह है, जब नींद का काम करता हूँ तो कमर में दर्द होता है, धीरे धीरे सीधा होता हूँ मैं।
2: आगे आगे झुकने से बढ़ता है क्या?
1: जी, आगे झुकने से दर्द मेरा, जैसे नींद मेरा खेती का काम करता हूँ जी मैं।
2: वो तो ठीक है, पर जैसे आप आगे की तरफ झुकते हो कोई काम करने के लिए तो क्या दर्द बढ़ जाता है क्या?
1: हाँ, कमर में नीचे की तरफ दर्द बढ़ता है, फिर धीरे धीरे सीधा हूँ।
2: हाँ, तो इसका मतलब ये है कि आपके ना डिस्क की प्रॉब्लम है, कोई नस आपकी दबी हुई है वहाँ पे, उसके लिए आप जो करते थे ना, जैसे पहले दंड लगाते थे, दंड लगाते से समझ रहे हो दंड लगाना, तो ऐसे ही मैं आपको एक्सरसाइज बता रहा हूँ। अगर आप अभी घर में हैं तो दीवार के ऊपर सीधे खड़े हो जाइए और अपने कंधों के सीध में दीवार पर दोनों हाथ रखिए।
1: अच्छा,
2: रखिए,
1: ठीक है जी।
2: और पैरों से दूर हो जाइए दीवार से, जैसे जैसे सीढ़ी होती है, जो जीना होता है लकड़ का, इस पोजीशन में खड़े हो जाइए।
1: अच्छा,
2: समझ रहे हैं मेरी बात आप?
1: हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल।
2: अभी अभी इस पोजीशन में खड़े हो गए आप, आपके हाथ दीवार पर हैं और पैर आपके दीवार से दूर हैं, ठीक है? तिरछे खड़े हो गए ना आप, ऐसे जैसे सीढ़ी की तरह। अब गर्दन को ऊपर उठाइए, गर्दन को ऊपर उठाइए और पीठ को आगे की तरफ दबाइए, बीच का हिस्सा जो पीठ है उसको आगे की तरफ दबाइए, तो इससे आपको जो है कमर में थोड़ा खिंचाव आएगा। गर्दन ऊपर उठाने से सर्वाइकल में आराम आएगा और जब पीठ को आगे दबाएंगे तो कमर में थोड़ा खिंचाव आएगा। कर रहे हैं आप ऐसे? कर रहे हैं क्या अभी?
1: जी, कर रहा हूं, कमर
2: तो, हाँ, तो अभी इसी पोजिशन में खड़े रहिए, थोड़ी देर में ये थोड़ा सा आपको खिंचाव बढ़ेगा और जैसे ही आपको खिंचाव बढ़ने लगे फिर 10 तक, 20 तक, 30 तक, जैसे आपकी हिम्मत हो इतनी काउंटिंग करनी, इतनी गिनती गिनिए और उसके बाद में हट जाइए। फिर आराम से 5 मिनट 10 मिनट रेस्ट करिए, उसके बाद दोबारा करिए।

0: से आप 5 बार सुबह, 5 बार दोपहर, 5 बार शाम को करो तो आपको काफी हद तक आराम आ जाएगा। रही बात दवा की, अगर आपको दर्द है तो आप कोई भी आयुर्वेदिक तेल ले सकते हैं। महानारायण तेल आता है, पंचगुण तेल आता है, पिंड तेल आता है, उसको कमर पे लगाना। पर ध्यान रहे, वो कमर में जहां पे आपको पेन है ना, वहां पे उस तेल को रमाना है। वहां मालिश नहीं करनी, रगड़ा नहीं मारना तेल का, वहां हल्के हाथ से तेल को रमाना 15 मिनट तक। आपके घर में कोई बच्चा हो या आपकी वाइफ हो, तेल को थोड़ा सा गर्म करें और वहां पे बेहतर है कि आप एक जो है उड़द के आटे के एक गोल चक्कर बना लें और जहां पेन है वहां पे उस तेल को भरें। हल्का गर्म रहना चाहिए, जला मत लेना। तो उसको फिर जैसे तेल ठंडा होने लगे तो दूसरा तेल चेंज कर दें किसी चम्मच से, फिर उसको रखें। ऐसा 45 मिनट्स कंटिन्यू करें आप। दूसरा, आपको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं होता, कब्ज तो नहीं रहती? कब्ज नहीं रहती तो बहुत अच्छी बात है। अगर कब्ज रहती है तो अरंडी का तेल आप ले सकते हैं, ठीक है, आपको रिलीफ हो जाएगा। आप आराम करिए आप, और आगे झुकने की कोशिश मत करिए। अगर आपने नीचे कोई सामान गिरजा उठाना है तो बैठ के उठाइए, आप बैठ के खड़े हुए, झुक के नहीं उठा, झुकना नहीं आगे, ठीक है, आपको आराम आ जाएगा। ये 100% आराम आएगा इससे। आप
1: बहुत धन्यवाद, आपने हमें कॉल किया।
0: हाँ जी,
1: हमारे साथ दोस्तों अगले कॉलर लाइन पर हैं, देखते हैं उनका क्या सवाल है।
2: हेलो।
1: हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आपका, सवाल पूछिएगा।
2: नमस्कार मैडम जी को, रघुविंदर सिंह चट्ठा का नमस्कार।
1: नमस्कार, नमस्कार चड्डा जी, सवाल पूछे आप प्लीज, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आपको।
2: डॉक्टर जवाब साहब को भी नमस्कार।
0: नमस्कार जी, नमस्कार
2: डॉक्टर साहब। मेरा सवाल ये है।
0: जी सर बोलिए।
2: अगर किसी पर्सन को ये कंफर्म हो जाए कि उसको सर्वाइकल स्पोंडिलाइटिस है तो उसको स्क्रीन टाइम बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए, या मोबाइल देखना, या लैपटॉप या कंप्यूटर पे काम करना, या फिर टाइम शॉर्ट कर देना चाहिए?
0: देखो ऐसा है, ऐसा है, ये तो चीज पॉसिबल नहीं है कोई बिल्कुल कंप्यूटर काम नहीं करेगा, मोबाइल नहीं देखेगा। पर उसकी अपनी पोजिशन बदले, जैसे मोबाइल देख रहा है तो ऊपर उठा के देखे मोबाइल को, गर्दन झुका के ना देखे। अगर कंप्यूटर पे काम कर रहा है तो इसको जो आपका पैड है उसको टेढ़ा ऊंचा उठाए आगे, है ना, जैसे आपने किसी ऑफिसर की टेबल पे देखा होगा लगा होता है, तो उसको ऊंचा उठा के काम करे। पर ये ना कंटिन्यू काम ना करे, जैसे आपने उसे आधा घंटा काम किया, उसके 5 मिनट घूम लो, उसके बाद फिर कर लो काम, और बीच में जो मैंने एक्सरसाइज बताई थी आपको उसको करिए आप, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। बाकी मैंने जो एक सिंगल एक्सरसाइज बताई है, आपने शायद सुनी होगी, वो सर्वाइकल के लिए बेस्ट है। 99.9% लोग ठीक हो जाते हैं। मैं तो कहता हूँ आप खुद करेंगे ऐसे तो आपको रिलीफ मिलेगा, औरों को कराएंगे तो और भी ठीक हो जाएंगे। ये किस्म से आप सर्वाइकल के डॉक्टर बन जाएंगे विदाउट एनी मेडिसिन। ये हमारी गारंटी है ठीक करने की, हम करते हैं, ऑनलाइन भी करते हैं
1: जी। डॉक्टर साहब ये एक
2: सवाल, डॉक्टर साहब।
0: हाँ जी,
2: जय हिंद।
0: जी
1: बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब। यहाँ पे दो चीजें मन में आ रही हैं इस समय, एक तो ये कि आपने कहा कि दिन में 5 बार करना, सुबह शाम करना, तो इसमें खाने पीने से कोई फर्क नहीं पड़ता? अगर आपका पेट भरा हुआ कुछ है उससे कोई इसका फर्क नहीं,
0: सर्वाइकल को प्रॉब्लम आती
1: है? अच्छा जी, तो कभी भी ये किया जा
0: सकता है? कर सकते हैं।
1: ओके, और ये अगर पेन ठीक हो जाता है तो उसके बाद कंटिन्यू करना होता है छोड़ दें उसके बाद?
0: करते रहो, कभी कभी तो करते ही रहो,
1: तो बॉडी की स्ट्रेचिंग होती रहेगी,
0: क्योंकि एक्चुअल में क्या है मूवमेंट बंद होगी। लोग पहले खेलते थे कूदते सब कुछ, अब सब है नहीं। आदमी उठता है गाड़ी में बैठा है या जैसे भी गया, आप कंप्यूटर बैठ के जाके या मोबाइल सबके पास है, मोबाइल पे लगा रहता हूँ। एक घर में 4 आदमी 4 मोबाइल हैं, आपस में नहीं बात कर पाते हो। देखिए इंटरटेनमेंट ही बहुत जरूरी है लाइफ में, इंटरटेनमेंट सबसे जरूरी है। मैं आपको बता दूं, लोग शादी के बाद में जो घर में रहते हैं हंसना भूल जाते हैं, हंसना बहुत जरूरी है।
1: चलिए हमारे पास अगले जो मैसेजेस आ रहे हैं उनको हम शामिल कर लेते हैं।
0: जी मैडम।
1: मुकेश जी हैं ये दिल्ली से, इनकी उम्र 35 वर्ष डॉक्टर साहब, और ये कहते हैं कि गुड आफ्टरनून, मुझे साइटिका का बैक पेन हुआ था लास्ट ईयर, और अब मैं जब बाइक चलाता हूँ और या किसी सॉलिड जगह पे बैठता हूँ तब पेन होता है बैक में। शोल्डर पेन है 2 साल से, और सोने के वक्त कंधे दर्द होते हैं, लेफ्ट या राइट सीधा भी नहीं होता, सो पाता हूँ मैं, मतलब ऐसा ये कहना चाह रहे हैं।
0: देखिए ऐसा, जहाँ तक ये आपको लेग में जो पेन जा रहा है तो आपकी जो नस है रीढ़ की हड्डी में जो है दबी हुई है, डिस्क प्रॉब्लम है आपको। कंधे में आपको पेन है तो हो सकता है आपको फ्रोजन शोल्डर की शिकायत हो या सर्वाइकल की प्रॉब्लम भी हो। सर्वाइकल का मैंने आपको इलाज बता ही दिया जैसे करना है, सारा बताया, और डिस्क वाला भी मैंने बता दिया, अभी एक पेशेंट को बताया था, आपने शायद सुना भी होगा। अगर पेन ज्यादा तो आप दवाई ले सकते हो। रही बात आपकी मोटरसाइकिल पर जाने की, क्योंकि मोटरसाइकिल पर झटका लगता है, अगर डिस्क वाला प्रॉब्लम है तो आप मोटरसाइकिल नहीं चला सकते। आप या तो गाड़ी में जाइए या मेट्रो में जाइए, जैसे जो व्हीकल हो, पर आप इसमें अगर चलेंगे तो झटका लगेगा। जहां भी झटका लगेगा, अगर आपने पैर आपका ऊंचे नीचे चला जाएगा, मान लीजिए गांव में जैसे ढेल होती है ऊंची, अगर आपने वहां झटका लगाया तो एकदम आपको पेन बढ़ जाएगा। इसलिए आपको प्लेन जगह पर चलना है और स्लो चलना है, तेज नहीं चलना, तो ये सावधानी आपको रखनी पड़ेगी, तब आप ठीक होंगे।
1: ओके, अच्छा ये भी एक बड़ी बात आपने कही, एक्सरसाइज करने के टाइम पे हम सोचते हैं ज्यादा तेज चलने से शायद फायदा होगा, तो जब पेन है तब तेज नहीं चलना, आप ये कह रहे हैं। ओके, तरुण कुमार है छत्तीसगढ़ से, आप लिखते हैं कि सर आपसे पूछ रहे हैं सवाल ये कि सर जब हम एक्सरसाइज करते हैं उस समय गलत एक्सरसाइज हमारी पीठ में उसकी वजह से दर्द हो जाता है, जो पीठ में दर्द होता है एक्सरसाइज करने से, उस दर्द को ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? साथ ही इनका एक और सवाल है कि हम ऊंचे ऊंचे तकिए जो है वो सोने के समय ले लेते हैं, तो उससे

0: बदन में दर्द की शिकायत हो जाती है, तो क्या ये दोनों चीजें एक्सरसाइज करके ठीक की जा सकती हैं, दर्द ठीक किया जा सकता है?
1: देखिए, जिस भी एक्सरसाइज से आपको दर्द बढ़ रहा है उस एक्सरसाइज को छोड़ दीजिए। सोने के लिए जो तकिया इस्तेमाल कर रहे हैं तकिया को हटा दीजिए आप, तभी आपका सुधार हो सकता है, तभी आप ठीक रहेंगे। अगर आपने गलत एक्सरसाइज करोगे तो तकलीफ बढ़ेगी, ठीक कहां से हो जाएगी? ठीक वाली बात तो मैंने आपको बताई है, सर्वाइकल की मैंने बता दी, डिस्क की मैंने बता दी आपको, उसको तरीके से करिए ना आप, आपको आराम आएगा। अगर गलत पोस्चर होगा और गलत एक्सरसाइज करेंगे तो फिर तो भगवान ही ठीक कर सकता है भाई, इंसान के बस का तो है नहीं।
0: दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं रेडियो डॉक्टर में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट फॉर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। हमारे साथ हैं डॉक्टर बी एस दबास जी और मैं हूं आपकी दोस्त तपस्या। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: अगर गलत पोस्चर होगा और गलत एक्सरसाइज करेंगे तो फिर तो भगवान ही ठीक कर सकता है, भाई इंसान के बस का तो है नहीं।
1: दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं रेडियो डॉक्टर में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट फॉर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। हमारे साथ हैं डॉक्टर बी एस दबास जी और मैं हूं आपकी दोस्त तपस्या। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है सर्वाइकल से रिलेटेड तो उसका आप समाधान हमारे डॉक्टर साहब से पा सकते हैं। डॉक्टर बी एस अब्बास जी हमारे साथ हैं और मैं हूँ आपकी दोस्त तपस्या, और हमारे साथ एक कॉलर है लाइन पर। देखते हैं कौन है और क्या है उनका सवाल। हेलो
2: हेलो
1: हेलो जी, नमस्कार, आपका स्वागत है रेडियो डॉक्टर में।
2: जी नमस्कार मैम, मैं डॉक्टर साहब को भी नमस्कार करता हूँ। अविनाश महावरा बोल रहा हूँ, गाँव सन्नौट दिल्ली 40 से।
1: जी
3: नमस्कार जी, नमस्कार बोलिए
1: जी, सवाल पूछिएगा।
2: साहब मैं ये जानना चाहता हूँ, थोड़ा देर से ट्यून कर पाया हूँ, एक बार एक्सरसाइज बता दीजिए सर्वाइकल की दोबारा से।
3: ठीक है बता देता हूँ, जरा सुनिए ध्यान से, और भी कुछ लिसनर हो भी जरा देख लें। देखिए आप सीधे खड़े हो जाइए, दोनों हाथ सामने करिए जैसे पीटी में करते हैं, हथेली नीचे की तरफ होनी चाहिए। उसके बाद दोनों हाथ वहीं से सीधे साइड में लाइए, हथेली नीचे रहें।
2: हाँ जी।
3: उसके बाद दोनों हाथ पीठ के पीछे जाएंगे बटक्स के ऊपर, और हथेली मिलाइए आपस में, लॉक करिए। लॉक कर दिया, सीधे खड़े रहिए, झुकना नहीं है पीछे की तरफ, और दोनों हाथों को पूरा नीचे खींचिए, पूरी ताकत हाथों में डाल दीजिए। अब हाथ ढीले नहीं करने जब तक मैं ना कहूँ। अब गर्दन को पीछे लीजिए, गर्दन चलेगी पीछे।
2: हाँ जी।
3: अब 30 तक काउंटिंग करिए, 30 तक मतलब आधी मिनट।
2: ठीक है जी, 30 तक हो जाएगा।
3: 30 तक काउंटिंग हो जाए तो पहले गर्दन सीधी करिए, फिर हाथों को धीरे धीरे ढीला करिए और साइड में लाइए। यहाँ 7 तक काउंटिंग करिए, फिर आगे लाइए सामने की तरफ।
2: हाँ जी।
3: यहाँ 7 तक काउंटिंग करिए।
2: ठीक है।
3: उसके बाद हाथ नीचे कर लीजिए और बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए और बैठ जाइए। 2 मिनट या 5 मिनट रेस्ट करने के बाद फिर दोबारा करिए आप। ऐसे 5 बार करो, अभी अभी हम रेडियो प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, 5 बार करते ही आपको रिलीफ मिलेगा। और आप अपने मुंह से बोलना, बताना हमें क्या मिला नहीं मिला। मैं दावे साथ करता हूँ आप 100% बोलेंगे हाँ मुझे रिलीफ मिला है, करके देखिए प्लीज। थैंक यू,
1: बहुत शुक्रिया। अब हमारे पास डॉक्टर साहब कुछ मैसेजेस भी आ रहे हैं। रेनू है दिल्ली से, आप लिखती हैं व्हाट आर द एक्सरसाइजेस फॉर फ्रोजन शोल्डर। तो इनके जो कंधे हैं वो फ्रोजन मतलब हो चुके हैं, जकड़ चुके हैं, तो वो उनको उनके लिए पूछने को एक्सरसाइज अगर हो तो आप बताइए प्लीज।
3: एक्सरसाइज है आपके ना, कंधों की मूवमेंट करिए आप। ये तो ये है, आप दोनों हाथ कंधों पर रखिए और उनको घुमाइए, आगे की तरफ घुमाइए, फिर रिवर्ट को वापिस घुमाइए। पहली मूवमेंट तो यही है, फिर दूसरा जो है सामने की तरफ आगे ताली बजाइए, पीछे बैक में पीठ में ताली बजाइए। ठीक है, और हाथों को घुमाइए आगे की तरफ और पीछे की तरफ घुमाइए, एक्सरसाइज करिए आप। एकदम ज्यादा नहीं करनी, थोड़ी थोड़ी करिए, पर कई बार करिए आप। जो फ्रोजन शोल्डर है आपको आराम आ जाएगा, और लगाने के लिए कोई भी हमारा ऑयल लगा सकते हैं, आयुर्वेदिक ऑयल। मैंने बताया नाम, महारान तेल है, पंचकुण तेल है, पिंड तेल है, क्षीरबला तेल है, बहुत सारे तेल वो लगाए उसको, और उसको हल्के हाथ से मसाज करना है उसका, वहां तो हल्का सा प्रेशर डालना है। तो ऐसा आप जो है कम से कम 15-15 मिनट एक कंधे पर करना है, ऐसे करिए। ठंडी चीज अपनी सारी अवॉइड कर दीजिए, जो भी खाने वाली चीजें, चावल, दही, लस्सी, मूली, नींबू, फ्रिज का पानी, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स। एसी में, एसी को अवॉइड करिए, और एसी में जरूरी है तो 28 में चलाइए उसको, ज्यादा ठंडा होगा तो आपका पेन बढ़ेगा। दूसरा जो वायुवर्धक चीजें जैसे मटर है, गोभी, राजमा, छोले, उड़द दाल, बैंगन का थोड़ा अवॉइड करिए। अगर आलू की सब्जी खाते तो आलू को उबालिए, पानी फेंक दीजिए, फिर खाइए, कच्चे आलू की सब्जी मत बनाइए। तो ये आप प्रिकॉशन लेंगे आपको ठीक हो जाएगा, ये हमारी गारंटी ठीक करने की। करिए सही आप जरा।
1: यहाँ पर दो चीजें मैं आपसे और पूछती चलूँ। आपने तेल का कई बार जिक्र किया और आपने कहा उसको गर्म करके लगाना चाहिए, तो कोई भी तेल जब हम लगाते हैं तो गर्म करके ही लगाया जाए,
3: उसका एक्शन जल्दी होता है, ज्यादा होता है
1: जी,
3: फास्ट एक्शन हो जाएगा। और ठंडा लगाएंगे तो फिर आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसके ऊपर
1: जी। और दूसरा,
3: एक और इम्पोर्टेंट बात है, तेल कभी डायरेक्ट गर्म मत करिए, पहले पानी में उबालिए किसी भी पतीले में, उसमें दूसरे एक बर्तन में डालकर तेल रखिए। ऐसे तेल गर्म करना चाहिए, तेल बार बार करने से, गर्म करने से उसे कार्सोजेनिक हो जाता है, उससे कैंसर होने का खतरा रहता है। अब मैं देख रहा हूँ बहुत से सेंटरों में वो तेल को डायरेक्ट गर्म कर रहे हैं और लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बड़ा दुर्भाग्य इन चीज़ों का। मैं क्यों, मैंने पंचकर्मा केरल से किया हुआ है, तो वहाँ मैंने बड़ा अच्छा सिस्टम देखा केरल में, वो प्रॉपर तरीके से काम करते हैं। पर मैं यहाँ दिल्ली में देख रहा हूँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जितने भी मैंने पंचकर्मा हॉस्पिटल सेंटर जो खुले हुए सब डायरेक्ट तेल गर्म कर रहे हैं, जो हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, फ्यूचर में आपको कोई बीमारी आ सकती है।
1: तो आप ये कह रहे हैं जो सर में हेड मसाज की जाती है वो भी तेल गर्म करते रहे, गर्म पानी में रखा जाए।
3: सिर में हल्का, सिर में ज्यादा गर्म तेल इस्तेमाल नहीं होता, हल्का कोसा तेल लगा सकते हैं
1: जी, तो वो सीधा आंच पे रखा जा सकता है।
3: आंच पे रखना ही नहीं तेल कोई भी,
1: वही हम आपसे कह रहे हैं।
3: हाँ, तो नहीं रखना आंच पे, तो तेल गर्म करना ही नहीं चाहिए कोई भी
1: जी। डॉक्टर साहब एक कॉलर हमारे साथ है, उनको हम लेते हैं जरा। हेलो
4: नमस्कार मैम।
1: जी नमस्कार,
4: डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
3: नमस्कार जी
4: सर, मैं ये पूछना चाह रहा था, एक्चुअली मेरा मार्केटिंग का जॉब है और मैं

0: गाड़ी ड्राइव ज्यादा करता हूँ।
1: जी
0: तो अभी लास्ट टाइम लगभग 10 दिन पहले मेरे साथ इतफाक ऐसा हुआ कि मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ था और मेरे को काफी ज्यादा चक्कर आ गए थे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। तो
1: देखो, चक्कर आने के
0: मैं जानना
1: बहुत
0: चाह रहा हूँ कि सर्वाइकल
1: हाँ
0: की वजह से। नहीं
1: देखिए, आपका जॉब क्या है? कोई कंप्यूटर पे काम करते हैं? ज्यादा मोबाइल यूज करते
0: नहीं
1: हैं आप?
0: मेरा कंप्यूटर का नहीं है, मार्केटिंग में इंडस्ट्रीज में जाता हूँ, फैक्ट्री
1: कोई
0: वगैरह में।
1: कोई
0: कहाँ
1: मोबाइल का
0: से
1: ज्यादा
0: बोल
1: यूज
0: रहे
1: करते
0: हैं,
1: हैं?
0: अपना नाम प्लीज बताइए और कहाँ से बोल रही बताइए तो।
1: मैं
0: मेरठ से बोल रहा हूँ, वीरेंद्र शर्मा मेरा नाम है।
1: जी, देखिए ऐसा होता है, चक्कर आने के बहुत सारे कारण होते हैं। आपका ब्लड प्रेशर का भी कारण हो सकता है, आपको हीमोग्लोबिन कम हो तब भी चक्कर आ सकते हैं, और सर्वाइकल उसमें भी चक्कर आ सकते हैं। ये तो आपको करना पड़ेगा कि क्या क्यों चक्कर आ रहे हैं। अपना हीमोग्लोबिन
0: लेकिन सर
1: खून
0: मेरे को फर्स्ट टाइम हुआ ये। हाँ
1: नहीं, देखो कोई भी चीज़ होती है फर्स्ट टाइम होता है, बच्चा फर्स्ट टाइम पैदा होता है, तो ये सब काम फर्स्ट
0: जी
1: टाइम
0: जी
1: होते हैं। कोई
0: बिल्कुल।
1: बीमारी आए चाहे कुछ भी, तो फर्स्ट
0: हाँ
1: टाइम होता है सारा। सेकेंड
0: हाँ
1: टाइम तो
0: नहीं नहीं
1: बाद की
0: सही
1: बात
0: बोल।
1: होती है। तो मैंने बोल दिया आपको सर्वाइकल के लिए, मैंने बता दिया एक्सरसाइज करिए आप। अगर आपको सर्वाइकल होगा तो रिलीफ हो जाएगा 100%। अगर मान लो कोई और वजह होगी चक्कर आने की, तो फिर आपको और जांच करानी पड़ेगी अपनी।
0: तो डॉक्टर साहब कुछ क्या जांच करवानी चाहिए, कुछ इनको सलाह दे पाएंगे आप?
1: हाँ, जांच करा सकते हैं आप। भाई पहले तो आप हीमोग्लोबिन चेक, अपना एचबी हीमोग्लोबिन चेक करा लीजिए, अपना ब्लड प्रेशर भी आप चेक कराइए, अपनी आंखों भी आंखें आई साइट भी आप चेक कराइए। ठीक है, ये सारी छोटी मोटी चीजें तो चेक करा लीजिए, फिर आगे अगर ये सब
0: जी
1: नॉर्मल
0: जी
1: मिलती है तब आगे के बारे में सोचेंगे।
0: जी
1: जी
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल।
1: और गर्म में अगर आप खाली पेट जा रहे हैं तो उसके वजह से भी, माल न्यूट्रिशन से भी चक्कर आ सकते हैं। इसलिए
0: अच्छा
1: खाना भी आपको टाइम से खाना चाहिए, जरूरी।
0: ओके। अच्छा
1: जी
0: खान
1: हाँ
0: पान से भी फर्क
1: हाँ
0: पड़ता है।
1: मैडम, सारे पकता है, खान
0: जी
1: पान
0: जी
1: सारा ही
0: जी
1: तो है।
0: ये बहुत अच्छी बात
1: हाँ
0: आपने बताई
1: हाँ
0: कि खाना जो है प्रॉपर
1: खाने,
0: तरीके से
1: हाँ
0: खाना
1: टाइम से
0: चाहिए।
1: खाना खाना
0: बहुत बहुत
1: चाहिए
0: धन्यवाद।
1: जरूरी है जी।
0: खाना पीना तो मैं समय से लेता हूँ
1: हाँ
0: जी।
1: जी
0: मुझे जरा सी एक जानकारी हो, यदि आपके पास समय हो तो दे पाएंगे
1: जी पूछिएगा।
0: जी। एक्चुअली मैंने ये तो चक्कर आने की समस्या हुई है। कभी आप लोग भी सफर करते होंगे तो
1: जी
0: जैसे हम लोग स्टेशन पे जाते हैं, आपको लगता है बराबर वाली ट्रेन चल रही है
1: हाँ जी,
0: और जबकि वो खड़ी रहती है,
1: आप
0: चलती नहीं है।
1: देखिए
0: तो
1: पूछिएगा प्लीज जी।
0: ये मेरे को मतलब ट्रैफिक में भी कई बार ऐसा हो जाता है जब जाम में मेरी गाड़ी रुकी हुई होती है।
1: हाँ, तो ऐसी
0: मैं
1: ऐसी
0: ये
1: फीलिंग
0: जानना
1: होती
0: चाह
1: है।
0: रहा था। हाँ, बराबर में गाड़ी चल रही है और मेरा कई बार ब्रेक पे पैर चला जाता है कि गाड़ी चल रही है जबकि ट्रैफिक बंद है।
1: तो उसके लिए ना अपना, हमारी दवाइयाँ आती है आयुर्वेद में, जैसे शंख पुष्प भी आता है, ठीक है,
0: जी
1: अश्वगंधा
0: जी
1: आता है, अश्वगंधा आता है, लिक्विड भी आता है, पाउडर भी आता है, आप उसको लीजिए। आप उसको खाली पेट शंख पुष्प भी सिर्फ लीजिए आप, और अश्वगंधा आप दूध के साथ लीजिए, पाउडर है तो, और पीने वाली है तो खाने के बाद पीजिए, 4 चम्मच दवाई 4 चम्मच पानी में लग लीजिए, आपको रिलीफ हो जाएगा।
0: जी डॉक्टर साहब ये बिल्कुल। लेकिन ये रीजन क्या है सर, किस कमी से वीरेंद्र जी होता जैसे है? डॉक्टर साहब ने कहा कि आप इसके लिए एक बार टेस्ट करवा लीजिए तो शायद आपको स्पष्ट हो पाएगा। ब्लड प्रेशर का जैसे वो कह रहे हैं, हीमोग्लोबिन का भी कह रहे हैं, कुछ चीजें हैं, आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। अगर सर्वाइकल का है तो कुछ एक्सरसाइजेस बताई गई हैं, अगर आप उनको कर पाएं तो शायद आपको रिलीफ मिलेगा। बहुत शुक्रिया
1: जी
0: कॉल
1: मैम,
0: करने
1: थैंक
0: के लिए।
1: यू
0: डॉक्टर साहब
1: थैंक यू।
0: ये केरी त्रिपाठी हैं, 70 वर्ष अपनी आयु बता रहे हैं, रांची से इनका मैसेज आया है। ये पूछ रहे हैं कि आयुर्वेद के अनुसार कौन कौन सी कसरत करने से सर्वाइकल स्पॉन्डाइलाइटिस से बचा सकता है, वो आप कई बार बता चुके हैं। तो हमें लगता है केरी त्रिपाठी जी आपको शायद अब तक इसका समाधान
1: फिर
0: मिल
1: भी
0: गया होगा।
1: मैं
0: अभी हमारे पास बहुत सारे और मैसेजेस आ रहे हैं। तो पीलीभीत से तिलक जी हैं, लिखते हैं, मेरी दीदी की उम्र 47 वर्ष है, उनके पैरों के खुर्द में बहुत दर्द रहता है और दर्द के कारण वो चल भी नहीं पाती। तो ऐसे में उनको आराम के लिए हम क्या कर सकते हैं?
1: पीठ में दर्द रहता है,
0: नहीं, पैरों में।
1: पैरों में
0: जी
1: पिंडलियों में दर्द होता है।
0: हाँ, इन्होंने लिखा ये है कि उनको दर्द रहता है खुर्द में। खुर्द क्या होता है ये आप तो आप
1: अच्छा,
0: मोटे तौर पे वैसे ही बता दीजिए, अगर पाँव में दर्द है तो कैसे रिलीफ
1: मुझे
0: मिल
1: लगता है
0: सकता है?
1: खुर्द शायद नीचे तलवे को बोलते
0: हाँ
1: होंगे,
0: जी, हो सकता है जी।
1: और तलवे के लिए जो है आप अश्वगंधा पाउडर आता है हमारा, उसको 1 गिलास दूध में डालिए, 1 चम्मच पाउडर, 1 गिलास पानी डालिए, मंद आंच जब पकाइए, उसके जब पानी जल जाए, दूध उध जाए, उसके लिए बस तो आराम आएगा। और एक तेल का मसाज करिए, पिंड तेल का करिए या पंचगुण तेल का करिए, आराम
0: ओके
1: आएगा आपको।
0: जी। ये डॉक्टर साहब एक और मैसेज हमारे पास आया है, ये कहते हैं, गुड आफ्टरनून मैम, मेरा इनका जो एक कंधा है वो कहते हैं वो झुका रहता है, कभी लेफ्ट की तरफ कभी राइट की तरफ। डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराया तो वो कह रहे हैं कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेढ़ेपन की शिकायत है। तो इसमें कुछ किया जा सकता है एक्सरसाइज के माध्यम से इसको ठीक किया जा सकता है, कोई सोल्यूशन
1: देखिए,
0: इसमें है?
1: कभी आपका लेफ्ट का झुक रहा है, कभी राइट का झुक रहा है, इसलिए आपने, कितनी उम्र है आपकी?
0: इसमें उम्र इनकी नहीं लिखी है,
1: मैसेज है
0: मैसेज है
1: तो इसके लिए
0: जी।
1: जो पहले दंड लगाते थे, दंड लगाते थे, आप दंड लगाइए, आपके कंधे दोनों दोनों पे बराबर प्रेशर पड़ेगा और आप ठीक हो जाएंगे। ये
0: जी
1: कर सकते हैं आप आराम से।
0: अच्छा, ये ललित भाटिया जी का एक सवाल डॉक्टर साहब हमारे पास आया है, अहमदाबाद से। 65 साल अपनी उम्र बता रहे हैं और कह रहे हैं, डॉक्टर साहब मैडम आपको धन्यवाद, सही जवाब हमें मिल रहे हैं। इनको हर्निया और बवासीर की प्रॉब्लम है, तो इन्हें क्या करना चाहिए अगर सर्वाइकल है तो?
1: देखिए, हर्निया के लिए तो ये है कि भाई हर्निया क्यों होता है, हर्निया का एक हर्निया, एक तो अम्बिलिकल हर्निया है और दूसरा इनवॉल्व हर्निया जो कॉमन होते हैं। तो अम्बिलिकल हर्निया का तो हम वैसे इलाज कर देते हैं आयुर्वेद तरीके से, ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, बच्चों में कॉमनली होता है ये, कई बार बड़ों में होता है, पर वो लोग सर्जरी के लिए पहुंच जाते हैं तो सर्जरी हो जाती है उनकी। दूसरा जो

0: इंग्वाइल हर्निया है उसके लिए आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, आप जोर लगा रहे होंगे तो इंग्वाइल हर्निया बढ़ेगा, खांसी होगी तो प्रेशर पड़ेगा तो बढ़ेगा, और आपको जो है वजन उठाओगे तो भी बढ़ेगा। इसलिए इन चीज़ों से बचना चाहिए, कब्ज मत होने दो कभी भी, खांसी हो तो फौरन दवाई लो, और जहां पे आप प्रेशर आ रहा है वहां पे हाथ रखो। आपकी जो आजकल जो मॉडर्न टॉयलेट आई हुई है इंग्लिश टॉयलेट, ये हर्निया पैदा करने का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि इसमें आदमी सीधा बैठता है, प्रेशर डालता है, कॉन्स्टिपेशन होता है तो पोटी तो उसको आती नहीं है, वो प्रेशर साइड में जाता है, तो वहां जहां भी झिल्ली कमजोर होती है हाथ की, वहां से हाथ बाहर आती है, हर्निया बन जाता है। इसलिए देसी सीट टॉयलेट सीट का इस्तेमाल करिए, हर्निया नहीं होगा। कब्ज में तो होने दीजिए, कब्ज है तो अब आयुर्वेद में बहुत दवाइयां आती हैं। वैसे तो कब्ज का सबसे अच्छा तरीका है कि सुबह उठकर आप 1 से 1.5 लीटर जल हल्का गर्म करके बैठ पीजिए, आधा घंटे पेट साफ हो जाएगा आपका, कब्ज रहेगी नहीं। हम तो दवाइयां देने की पक्ष में भी नहीं है, आप ऐसे पानी से ही पेट साफ हो सकता है, सबसे अच्छा तरीका है ये, और ये आप ऐसा करिए तो आपको कब्ज नहीं होगा। हर्निया के लिए मैंने आपको बता दिया, अगर हर्निया की स्टेज ज्यादा आ गई तो हो सकता है फिर ऑपरेशन करना पड़े, पर अगर स्टार्टिंग होता है तो हमारे पास आए, हम ठीक कर देते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, तो आप ये कर सकते हैं
1: जी। डॉक्टर साहब बहुत से सवाल हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन आपने पानी की जो बात की, बहुत बार ये कहा जाता है कि बहुत लोग, हर किसी का बॉडी अपना टाइप अलग होता है, तो उनको ज्यादा पानी का इंटेक नहीं लेना चाहिए या पानी किसी को सूट नहीं करता, तो ये सबके लिए नियम एक जैसा है 1.5 लीटर पानी 1 लीटर
0: पानी पीने में अगर किसी को दिक्कत है तो पानी में अगर किसी को नींबू सूट करता है तो नींबू डाल सकता है, अगर किसी को पानी फीका पानी पीने मुश्किल है तो थोड़ा सा उसमें दूध डाल सकता है। पानी पीने आप एकदम नहीं पी सकते तो एक एक मग्घा करके आधा आधा लीटर दिन में तीन उस मॉर्निंग में 3 बार पी लीजिए, 15-15 मिनट का गैप देके पी लीजिए, 1.5 लीटर पानी आपके पेट में जाएगा। तो पानी का जो प्रेशर, जैसे आप फ्लैश चलाते हैं तो मल कैसे जाता है, फ्लैश चलाने से मल अंदर जाता है ना आगे, ऐसे ही आप ऊपर से पानी डालेंगे तो उसका प्रेशर आएगा और पोटी को नीचे सरका देगा, पेट साफ हो जाएगा, सबसे आसान तरीका है
1: जी। डॉक्टर साहब ये कामत है दिल्ली से, उम्र अपनी 30 साल बता रहे हैं, ये लिखते हैं दोनों हाथों के जो कंधों का जो है इनका दर्द बना रहता है दिन भर और कमर में लोअर बैक में भी पेन रहता है पिछले 1.5 साल से, आयुर्वेद में कोई तेल या कोई योग या उपचार हो तो कृपया बताएं।
0: देखिए तेल तो मैंने बताए, कई बार बता चुका मैं, बहुत सारे तेल आयुर्वेद में आप उसको लगा सकते हैं, थोड़ा हल्की सी एक्सरसाइज करें, और कमर में जो लोअर बैक में पेन है वो अगर आगे झुकने से बढ़ रहा है पेन, तो बताइए अब मैसेज है क्या, तो आगे झुकने से बढ़ रहा है तो इसका मतलब डिस्क की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, और आगे झुकने से नहीं, बाकी मैंने एक्सरसाइज बताई अभी ऑनलाइन बताया मैंने समझाया, आप वो एक्सरसाइज करिए आपको आराम आ जाएगा। और कब्ज में तो होने दीजिए, अगर कब्ज है तो उसके लिए जरूर आपको दवाई लेनी पड़ेगी, ताकि कब्ज दूर हो जाएगी तो आपको पेन में रिलीफ होगा, अगर कब्ज होगी तो पेन बढ़ेगा
1: जी। डॉक्टर साहब ये बहुत अच्छी रोचक जानकारी आप दे रहे हैं, ऐसा हमारे लिसनर्स हमें लिखकर भेज रहे हैं। राकेश जी हैं भिंड से और ये कहते हैं, गुड आफ्टरनून सर एंड मैम, मेरे घुटने में पेन और ऐठन होती है जब बादल होते हैं या सर्दियां होती हैं, इनकी उम्र है 33 वर्ष, तो ऐठन के लिए
0: 33। हाँ देखिए ऐसा होता है कि ये हमारा जो खाना पीना है, जैसे हम खड़े होकर पानी पी रहे हैं, खड़े खड़े कैंपा पी रहे हैं, तो इससे क्या होता है हमारा जो गरीस है घुटने का वो कम होता है, आम भाषा की बात बता रहा हूं मैं, और खड़े होकर आप दूध पियेंगे तो गरीस बनेगा, तो ये घुटने की हम एक एक्सरसाइज ही बताते हैं, वो एक्सरसाइज करेंगे आप तो आपका घुटना ठीक हो जाएगा, थोड़ा ठंडी चीजें अवॉइड करिए खाना पीना आप, तो ये थोड़ा सा खाने पीने का सिस्टम सुधारिए अपना और एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज भी मैं अगर आप सुन रहे होते तो मैं आपको समझा देता अभी, ऐसे तो क्या फायदा, ऐसे ऐसे नहीं समझ पाएंगे तो कुछ फायदे नहीं कहने का, तो एक्सरसाइज करने से ठीक हो जाता है। बाकी बेस्ट तरीका यही है कि आप खाना पीना सुधारिए अपना, ठंडी चीज अवॉइड करिए, एक्सरसाइज करिए
1: जी। तब तक एक गीत सुनते हैं।
2: इस भागती दौड़ती जिंदगी में भी तन और मन को निरोग किया जाए,
3: क्यों ना रेडियो डॉक्टर सुनकर स्वस्थ रहा जाए।
2: रेडियो डॉक्टर प्रतिदिन दोपहर 3 बजे FM रेनबो 102.6 MHz पर।
3: कार्यक्रम का फीडबैक और सुझाव भेजें health@airdelhi.com पर।

0: अगला सवाल लेते हैं। दोस्तों, आप सुन रहे हैं इस समय रेडियो डॉक्टर। आज हम बात कर रहे हैं सर्वाइकल स्पॉन्डाइटिस के बारे में, किसकी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या हो सकती है। डॉक्टर बी एस जबास जी आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं और बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास आ चुके हैं। समय थोड़ा कम है। डॉक्टर साहब, ये साहिल जी हैं मेरठ से, कहते हैं मेरे पैरों के तलवों में दर्द रहता है, क्या करूं? उम्र इनकी 27 साल है।
1: तलवों में दर्द का हमने अभी बताया था आपको कि एक तो तेल की मालिश करें आप, दूसरा अगर मान लीजिए आपको तलवा ऐसा भारी भारी लग रहा है आपको, तो अश्वगंधा चूर्ण एक चम्मच और एक गिलास दूध और एक गिलास पानी उसको मंदी आंच पे पकाएं और उसके बाद जो दूध दूध रह जाए उसको आप पिए और बस इससे आराम आ जाएगा आपको।
0: जी, अगले हमारे जो मैसेज जिन्होंने भेजा है वो है राहुल दिल्ली से। आप कहते हैं, और सर मेरा नाम राहुल है और मेरे पेट में हमेशा, इनका पेट जो है वो टाइट रहता है, कुछ भी खाता हूं तो एकदम पेट टाइट हो जाता है पत्थर की तरह, और मैं अल्कोहलिक हूं, ये इन्होंने लिख के भेजा है, तो आप कुछ इसके बारे में?
1: देखिए, अब अल्कोहलिक है तो हो सकता है आपका फैटी लीवर भी हो, 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 ग्रेड। तो पहले तो आप अल्कोहल छोड़िए, अपना एक अल्ट्रासाउंड कराइए, पता लगेगा वाकई में आपका लीवर फैटी है तो लीवर फैटी की दवाई लेनी पड़ेगी आपको, ठीक है। और हल्का खाना खाइए, आमतौर पर घिया तोरी टिंडा सीताफल ये सब्जियां खाइए। हैवी खाना बंद कर दीजिए, राजमा है, छोले है, आपके पनीर है, ये सब बंद करिए आप।
0: अच्छा, पनीर से भी प्रॉब्लम होती
1: है? पनीर तो आजकल सारा ही मिलावटी आ रहा है, तो जहरी मिल रहा है, क्या कर सकते हैं
0: जी। अगले ये अरविंद जी हैं यमकेश्वर से, पौड़ी गढ़वाल से, उत्तराखंड से इन्होंने भेजा है संदेश, और ये कहते हैं, गुड आफ्टरनून मैम, प्लीज बताएं कि डॉक्टर साहब से पूछें कि कौन सा वेट गेनर जो है वो लेना चाहिए आयुर्वेदा के लिहाज से, जिससे वेट गेन कर सके।
1: अगर वेट बढ़ाना चाहते तो अश्वगंधा है हमारे पास, सतावर है, ये वेट बढ़ाने वाली चीजें हैं। बाकी खाने में आप दूध लीजिए, फुल क्रीम। अगर जल्दी वेट बढ़ाना है तो उड़द की दाल की खीर बना खाइए आप, उसमें नमक नहीं डालना तो आपका वेट बढ़ेगा। तो ये खाने पीने का थोड़ा डाइट अच्छी करोगे तो वेट बढ़ेगा
0: जी। डॉक्टर साहब, अबू उबैदा हैं उत्तर प्रदेश से, आप कहते हैं कि इनको सर्वाइकल है, गर्दन और हाथ में दर्द रहता है, हाथ में कभी कभी झुंझुनाहट भी रहती है, उम्र इनकी 45 साल है, क्या करें?
1: देखिए, हमने अभी एक्सरसाइज बताई आपको सर्वाइकल की, उसको करिए, आपका झुंझुनाहट भी खत्म हो जाएगा। आप करके देखिए सही, और जो तरीका उसको अपनाइए आप ठीक हो जाएंगे
0: जी। अगले नेहा है मुंबई से, आपने पहले भी सवाल किया और आपको धन्यवाद कह रही हैं, आपने जिनको एक्सरसाइज बताई है उसके लिए, और साथ ही कह रही हैं कि
1: आपने एक्सरसाइज करी क्या?
0: हाँ, उसी के लिए शुक्रिया कह रही हैं आपको ये, और लिख रही हैं कि इनकी मदर जो है 79 ईयर्स की हैं, उनको नी ज्वाइंट पेन रहता है, तो प्लीज उनके लिए कोई ट्रीटमेंट बताइए आयुर्वेदा में क्या हो सकता है।
1: नी ज्वाइंट्स के लिए पहली बात तो ये है कि अब इतनी उम्र है उनकी, तो भी खड़े होकर दूध पिए और बैठ के पानी पीना है, मतलब दूध के अलावा जो भी खाना पीना है बैठ के खाना है। ठंडी चीजें उनको अवॉइड करनी है और थोड़ा सा उनको घुटने की मूवमेंट करनी है, एक्सरसाइज करनी है। अब एक्सरसाइज आप समझ सकती हैं तो एक घुटना छाती से लगाइए, टांग के बीच में से हाथ निकाल के उसको वहीं रोकिए और आगे लेग को ऊपर उठाइए जितनी उठती है और फिर नीचे ले आइए। ये एक्सरसाइज धीरे धीरे करें, झटके से नहीं करनी, ऐसा आप हर 2 घंटे बाद में कर सकते हैं 10-10 बार, या अगर हेल्थ थोड़ा सा इंप्रूव कर ठीक है तो आप 35-35 बार दिन में 3 बार करिए। पर अगर आपको कमर में दर्द है तो ये एक्सरसाइज लेट के करनी है, अगर कमर में दर्द नहीं तो बैठ के कर सकते हो, आपको घुटने में आराम आएगा। थोड़ा समय लगेगा क्योंकि घुटना जो है वेट बीयरिंग ज्वाइंट है। दूसरा आप जो है अभी आपके कैल्शियम ले सकते हैं, अगर मोटी नहीं है, ज्यादा वजन ज्यादा नहीं थे, उनको अश्वगंधा दीजिए साथ में, तो ये आप ले सकते हैं, रिलीफ होगा। हड्डियां मजबूती के लिए लाख साधी गूगल आता है, वो ले सकते हैं।

0: पेन के लिए हमारे पास जो है त्रिवदसान गूगल है और कैशोर गूगल है और बहुत सारी दवाइयां, और आप ले सकते हैं कोई भी।
1: डॉक्टर साहब सुधीर सिंह जी हैं कुतुबगढ़ से, कहते हैं कि मैम बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं, उनको जल्दी जल्दी बुलाया कीजिए, ये इन्होंने लिख के भेजा है। एक चीज हम और ले लेते हैं लास्ट में, ये जो इनकी क्वेरी है, कहते हैं मैम मेरा एक सवाल है, मेरी मदर की, इनकी मदर जो है उनकी एज 45 बता रहे हैं, उन्हें लोअर बैक में बहुत पेन होता है, उनकी लेफ्ट लेग में भी पेन रहता है, क्या करें?
0: देखिए, मुझे लगता है अगर आगे झुकने से उनका पेन बढ़ रहा है तो 99 के 100% डिस्क की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये तो आप बताएंगे, आप झुकने से बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा। अगर मान लो झुकने से बढ़ रहा है तो आगे नहीं झुकना, पहली बात तो आगे झुकना ही नहीं है। दूसरा, जो सर्पासन होता है, सर्पासन वो ऐसे कर सकती हैं, उससे उनको रिलीफ हो सकता है। तो ये तो एक, या तो आप जांच कराइए उनकी, कंफर्म हो जाएगा भाई डिस्क की प्रॉब्लम है या वैसे। बाकी तेल है आयुर्वेद का, जो तेल, ये ध्यान रखिए जहां पेन है वहां पर प्रेशर डाल के मालिश नहीं करनी, हल्के हाथ से तेल को रमाना है। कभी भी रीढ़ की हड्डी की मालिश नहीं करते हैं, जो भी ज्वाइंट्स है उनके प्रेशर डाल के मालिश नहीं करनी चाहिए। लोग वहां प्रेशर डालते हैं और प्रॉब्लम बढ़ जाती है।
1: ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपने बताई है, जो हर आमो खास को, मुझे लगता है खासो आम को जो है ये मदद करेगी। तो डॉक्टर साहब इसी के साथ हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। दोस्तों हमारे साथ डॉक्टर बी एस डबास इस प्रोग्राम में रहे, जिन्होंने जो कंसल्टेंट है आयुर्वेदा की CGHS न्यू दिल्ली से, आपने हमें बताया आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट फॉर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको अपने सवालों के जवाब मिले होंगे। तो इसी के साथ मैं तपस्या रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम में आपसे लेती हूँ इजाजत, इस वादे के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात। आप सुनते रहिए FM रेनबो इंडिया। नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

वेल दोस्तों, तू ही सुन रहे हो प्रोग्राम हेलो जिलंधर विद आरजी रमनीश। वेल दोस्तों, अज चल रहे हैं मेरे स्वरा साहब ना गलबात, कहने मतलब मेरे स्रोते अज जेड़े ना मेरा साथ दे रहे ने। पहला तो सब तो पहले बैकग्राउंड सोना जी, म्यूजिक चला दिता जावे जी। वैल देखो जी, पता की होंगे, विआह की जी उम्र होंगी ना, वो सारे एक टाइम आती है दोस्तों, ये तो तुम एग्री करते होंगे, क्योंकि ना जो विआह

हाँ जी, हाँ जी दोस्तों, तुसीं सुन रहे सी एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी जलंधर दा है रेनबो चैनल है। ते हुण तुसीं युवा साथी जिहड़े हुण युवा साथी अपना प्रोग्राम सुनणगे युवाणी।

लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ।

0: वाह, क्या ही कमाल दी आवाज़ है अभिजीत भंडारी जी दी। बहुत बहुत उन्हां नूं शुभकामनावां युवाणी दे परिवार वालों। सानूं ही सुन के बड़ा अच्छा लग्गा ते मैनूं उम्मीद है कि साडे श्रोतियां ने भी उन्हां दी इंटरव्यू उन्हां दे नाल गल्लां करके बड़ा अच्छा लग्गा होएगा। है जब्स
1: बिल्कुल, सानू उम्मीद है कि साडे श्रोतियां नूं बहुत चीज़ां पता चलियां होणगियां सिंगिंग बारे ते अभिजीत दी जिंदगी दे बारे।
0: बिल्कुल। ते एक छोटी जी म्यूजिकल ब्रेक लैने हां, उस तो पहला कि असी अगले सैगमेंट वल वधीए।

0: एक जरूरी सोचना दोस्तों कि असी आकाशवाणी जलंधर दे एफएम रेनबो चैनल 102.7 मेगाहर्ट्ज़ तो बोल रहे हैं। हेडलाइनली लीड्स इंग्लैंड विखे आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप ना तहत भारत दे नैदरलैंड दियां महिला टीमां विचकार खेडे जाण वाले टी20 क्रिकेट मैच की ऑफ ट्यूब कमेंटरी अपने दिल्ली केंद्र तो शाम 6:30 बजे तो सुनोगे, पर एफएम रेनबो ते प्रोग्राम तुसी एफएम रेनबो ऐप ते सुनदे रहोगे। दोस्तों
1: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

दोस्तों, तो इस सुन रहे प्रोग्राम लव यू जिंदगी एफएमएनएक्स 102.1 सातवेगा हार्ट से आकाशवाणी जलंधर है, रेनबो चैनल है, ते मैं थोड़ा अपना आरजे दोस्त रमनीश ते समा हो गया है 6:19 ते 35 सेकंड ते कुछ ही चिरा चुतु सुनोगे प्रादेशिक खबरां।

नीदरलैंड्स खिलाफ खेलेगा मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। आखिर से खास खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जून को एक विशेष प्रोग्राम दौरान प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना अधीन करीब 2400 करोड़ रुपए के लाभ वंडणगे। पंजाब विच ए प्रोग्राम 6 थावां ते कराया जाएगा। राष्ट्रीय महिला कमीशन दे चेयरपर्सन विजया रातकर ने खुलासा किया है कि पिछले कई सालों विच पंजाब विच एनआरआई पतिया वालों करीब 32,000 औरतों नूं छड्ड दिता गया है। पंजाब विधानसभा दे स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने चंडीगढ़ च पंजाब एमएलए होस्टल तो विरासती फर्नीचर की अमरीका च कथित नीलामी बारे चंडीगढ़ प्रशासन तो वेरवे सहित रिपोर्ट मंगी। इस दे नाल ही साडा ए बुलेटिन खत्म हुंदा है। साडा अगला राष्ट्रीय बुलेटिन शाम 7 बजे होएगा। नमस्कार।

दोस्तों तो सुन रहे हो प्रोग्राम लव यू जिंदगी, तो मैं थोड़ा अपना आरजे दोस्त रमनीश। दोस्तों तुसी हुने गाना सुनिया परिंदा, मैं वो परिंदा जो फिर उड़ेगा। कहना मतलब दोस्तों ये विच आपा वैसे अजकल बात कर रहे हैं रिस्पेक्ट दी, पर कहते ना कि हाँ यार दोबारा उठ लेना चाहिए, कि पता साड़ी अगली मंजिल ही साड़ा अगला उठना होवे। असी दोस्तों गल कर रहे ना सत्कार ते, कहते ना कि सत्कार दे बिना पिलर्स होंदे ने, पिलर समझ रहे हो ना, थम, सत्कार दे थम यानी कि पिलर्स। सब तो पहला होंदा सुनना यानी कि लिसनिंग। सत्कार दी जिहड़ी पहली पौड़ी है अगले नूं पूरा सुनना, मोबाइल रख के अखा च अखा पा के। उदाहरण वजो बजुर्ग बापू जो 1947 की गल करे ना, पोता ना सोशल मीडिया बंद करके सुने, यह सुनना ही सत्कार है। सिख्या यह है कि बोलण नालों ना सुनण वाला वड्डा हुंदा है। दोस्तों उस तो बाद आती है सीमा यानी कि बाउंड्रीज। सत्कार मतलब अगले दी ना नूं हां समझना, उहदी निजी स्पेस दा माण रखना। उदाहरण लई ती दे कमरे च जाण तो पहला बूहा खड़खड़ाउणा, दोस्त दे फोन तो बिना पुछे ना फरोलना। सिख्या ही है कि जिथे सीमा मुकदी है उत्थे बेइज्जती शुरू होंदी है। दोस्तों उस तो बाद आंदा है अंतर, एक्सेप्टेंस ऑफ डिफरेंस। सत्कार मतलब यह मनना कि सामने वाला मेरा वर्गा नहीं, फिर भी ओना ही सही है। उदाहरण वजो लंगर च अमीर गरीब हिंदू मुसलमान इकट्ठे बैठ के खांदे ने, कोई पग बनदा हुंदा है कोई टोपी पाउंदा, ते दोवे रब दे घर बराबर। सिख्या यही है दोस्तों कि रंग नस्ल धर्म वखरे हो सकदे ने, पर दर्द ते खुशी दा रंग ना सब दा इक्को ही है। उस तो बाद आंदा है अज दे युग च सत्कार दा संकट। लोग कहंदे ने कि अजकल कोई किसी दा सत्कार नहीं करदा। सच यह है कि असी लाइक शेयर सबसक्राइब दे पिछे ना धन्यवाद माफ करना जी आया नूं भुल गए हां। उदाहरण वजो ना बस च ना बजुर्ग खड़ा, नौजवान कन्ना च जड़े हैडफोन लाके बैठा, पहला सीट आप मुहारे मिल जांदी सी हुण मंगनी पैंदी है। उदाहरण वजो सोशल मीडिया ते ना 2 सेकेंट च ना गाल कढ दिंदे आ, पर सामने वाले नूं मिल के ना सत श्री अकाल कहण तो झिझकदे आ। दोस्तों फलसफा यही है कि टेक्नोलॉजी ने ना दूरी घटाई है, मनो ना मनो दोस्तों तहजीब नहीं वधाई। सत्कार डाउनलोड नहीं हुंदा, संस्कारां चों आउंदा है। आखिरी है सत्कार किवें कमाया ते वंडिए, ऐसे 4 नुक्ते आ दोस्तों। पहला है दिओ फिर मंगो। जिहड़ा बीज बोचोगे ना, जिहड़ा बीज बीजोगे ना उही फसल वड्डोगे। छोटे बच्चे नूं भी जी कह के बुलाओ, वह भी थानू अंकल जी ही कहेगा या भैया जी भैन जी सब कुछ। उस तो बाद हुंदा है गलती मनो। सॉरी कहण नाल ना कद छोटा नहीं हुंदा, वड्डा हुंदा है। गुरु अर्जुन देव जी ने ना खुद तत्ती तवी ते ना बैठ के सबर दी मिसाल दित्ती सी। पिट पिछे तारीफ यानी कि मूंह ते चंगा बोलना सियाणप है, पिट पिछे चंगा बोलना ना सत्कार है।

0: मेरा एक जिद्दी गुआंढी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगा लेने, पर ओ मननु तैयार ही नहीं सी कि सचमुच बिल जीरो आ सकता है। मैं क्या पुत्र, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सब दा बिजली बिल जीरो आन लगा। फिर बोलिया, हुण लगा ही दिना हां। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़न लई रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: दोस्तों तू सुन रहे हो प्रोग्राम लव यू जिंदगी, तो मैं थोड़ा अपना आरचे दोस्त रमनीश। वेल दोस्तों बस कुछ ही वेला रह गया इस प्रोग्राम नू लव यू जिंदगी नू, ते अखीर विच ना एक प्यारियां जियां जिहड़ियां एग्जांपल्स दे नाल थानू डेफिनेशन दस के जाऊंगा सतिकार दी, ते लुक साडे जिहड़े महान बंदे रहे उन्हां दा की मन्ना सी ते असल च ओह सतिकार नू किवें दस गए सानू। दोस्तों उदाहरण वजो ना सब तो पहला भाई कन्हैया जी की दुश्मन का भी सतिकार करती सी। किवें जंगे मैदान च जो सिख जख्मी हो रहे सी, भाई कन्हैया जी सब तो सबनों पानी पिला रहे सी।

जी चलती है क्या 9 से 12 है जुड़ा फिल्म था वो कैंट जा गीत जो पहला सलमान खान साहब होना दे उदे फिल्म आएगा दैन उस तो बाद वरुण धवन जदों ये फिल्म रीक्रिएट होंदी है तो गाना रीक्रिएट होंदा है तो दैन उस तो विच ये गाना रीक्रिएट होंदा है तो गाना उस तरीके का बाकी प्रॉपर एनर्जी दे नाल फिर तो एक बार कैंट तरीके दे नाल सामने आता है। सो मतलब देव कोहली साहब मेरे ख्याल नाल लैजेंड जेकर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। सो आओ अगे इन्हां दी जर्नी दे बारे गलबात करते हैं। कहिंदे साल 1964 दे विच 22 साल दी उम्र दे विच कोहली साहब अपनी किस्मत अजमाउण दे लई फिल्मी नगरी मुंबई विच आ गए। उस वेले बंबई कहा जांदा सी। बंबई दे विच शुरुआती दिन बहुत मुश्किल भरे इन्हां दे रहे। उस तो बाद फिल्मी स्टूडियोज़ दे इन्हां ने चक्कर कट्टे संगीतकार अते निर्देशकां नूं मिलिया अते अपनियां नज़मां उन्हां नूं सुणाउंदे रहे। पहले ब्रेक की जेकर गल की जाए तो फिल्म गुंडा तो 1969 दे विच उन्होंने फिल्म मौका पहला मौका संगीतकार जो इन्होंने दोस्त जी एस कोहली ने दिता फिल्म सी गुंडा। 1969 दे विच उन्होंने एक गीत खुशी से जान ले लो जी का दूजा अंतरा लिखिया। एक करियर उन्होंने शुरुआत सी। इस विच गीतकार वजो इन्होंने क्रैडिट भी प्राप्त होया। उस तो बाद वड्डी सफलता की जेकर गल करिए 1971 दे विच इन्हां दे हाथ एक बहुत वड्डी सफलता लगती है जिसनों किशोर कुमार ने गीत नूं गाया। करियर का पहला सुपरहिट गीत लाल पत्थर फिल्म दे विच प्राप्त हुंदा है। अदाकार राजकुमार अते हेमा मालिनी जी ने फिल्माया यह गीत अते उस तो बाद आवाज़ जिहड़ी है किशोर कुमार जी की प्राप्त हुंदी है। गीत गाता हूँ मैं गुनगुनाता हूँ मैं जबरदस्त हिट गीत रहा। इस गीत ने देव कोहली जी ने इंडस्ट्री दे विच एक वक्री पहचान दिवाई पर अफसोस इस वड्डी सफलता के बावजूद लंबे समय तक इन्हों काम नहीं मिले। फिर अगे किस तरीके दे नाल इन्हों सफलता प्राप्त होंदी है किस तरीके दे नाल अगे ग्रो करते हैं होर की कुछ इन्होंने देखिया होर की कुछ इन्होंने गीतों के लिखा वह भी तुहानू सुनावांगे। बने रहो साडे नाल।

दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, कबूतर जा जा जा आजा शाम होने आई, आते जाते हंसते गाते कहो तो से सजना। मतलब बैक टू बैक सारे गाने उस फिल्म दे हिट, फिल्म हिट, गाने हिट, अतदेव कोहली साहब सुपर हिट। मतलब इदा दे गीत तो बाद इन्होंने शायद पिछे मुड़ के नहीं देखा। सो बिल्कुल इन्हां दे बारे होर गल्लां बातां करदे आ इसे तरीके दे नाल, बने रहो मेरे नाल FM रेनबो जलंधर ऐप दे उत्ते। मैं तुहाडा मित्र अर्जी परविंदर, एक होर कैंट जिहा गाणा प्ले कर देना, दैन फिर उस तो बाद गल्लां बातां नूं जारी रखदे आ जनाब।

नमस्कार, राधे वजगे नौ नौ ते पेश ने एक बार फिर तो एफएम न्यूज हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय माली संस्थावां वालों विकासशील देशों नूं आर्थिक मजबूती प्रदान करने लई विधियां विकसित कीतियां जानियां चाहीदियां ने। श्री मोदी ने अज फ्रांस के एवियान विच जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्स नाल दुवली मीटिंग की है। इलैक्ट्रॉनिक्स और सूचना तकनोलॉजी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलैक्ट्रॉनिक्स निर्माण वजों उभरिया है। उत्तर प्रदेश के गुजरात में दो सड़क हादसों में 12 लोगों की मौत हुई है, 30 के करीब जख्मी हुए ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जून को एक विशेष प्रोग्राम दौरान प्रधानमंत्री विकसित भारत रुजगार योजना अधीन करीब

एंड अगली फरमाइश साढ़े कोल पहुंच चुकी है। कहते पदमपुर जिला गंगा नगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा जी, ममता अरोड़ा जी, कीर्ति अरोड़ा जी, भूमिका अरोड़ा जी, मूवी वो कौन थी, नैना बरसे रिम झिम स्वाई, इनकी फरमाइश को प्ले कर देते हैं जी। एफएम रेनबो ऐप जालंधर पे।

अगली फरमाइश जेड़ी साढ़े कोल पहुंची है, कह रहे हैं नमस्कार जी, हार्दिक अभिनंदन रेनबो जलंधर के हम कायल हो चुके हैं जो इतना स्नेह बांट रहा है। गीत पलट मेरी जान, स्वर आशा भोसले जी, फिल्म आन मिलो सजना चंडीगढ़ सतीश अनेजा जी, विमला अनेजा जी, सो आइए इनकी फरमाइश भी हम ये वाला गीत प्ले कर दें जनाब।

और अगली फरमाइश जड़ी साढ़े कोल पहुंची कह रहे ने गाने के बोल मैं तेरे प्यार में पागल, आवाज़ किशोर कुमार जी की, प्रेम बंधन गीत है ये इसी फिल्म का। और मिर्जापुर क्षेत्र यशपाल धीमान, श्रीमती कृष्णा धीमान, राहुल धीमान, शुभम धीमान, प्रियंका धीमान, कोमल आंचल कुंज, पर्व प्रवीण धीमान, चिराग धीमान, रजत धीमान, राजेश धीमान, परविंदर सर जी सुप्रेम नमस्कार, प्यार भरी नमस्कार। आपने इन्वर्टर एसी के बारे में बताया जो बहुत ही उपयोगी चीज़ बताई हमें सभी के लिए, बचत एवं खर्चे के बारे में बताया, बहुत ही अच्छा लगा। इस प्रकार हमारे को भरपूर ज्ञान प्राप्त होगा, आप हमारा मनोरंजन करते रहें, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सो आइए इनकी फरमाइश प्ले कर देते हैं जी, FM रेनबो ऐप जालंधर पे।

नमस्कार। रात के 10 बज चुके हैं और आपने ट्यून किया हुआ है एफएम रेनबो ऐप जालंधर को। शाम गजल कार्यक्रम का आगाज हो चुका है और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आरजे परविंदर। कहते हैं कि दर्द कब ठहरेगा, दर्द दिल कब रात

कहते हैं कि कभी रोना कभी हंसना कभी हैरान हो जाना, मोहब्बत क्या भले चंगे को दीवाना बनाती है। FM रेनबो ऐप जालंधर, शाम ए गजल।

नमस्कार। रात के बिल्कुल 10:30 बज चुके हैं और आपने ट्यून किया हुआ है FM रेनबो ऐप जालंधर को, और मैं हूं आपके साथ आपका आरजे, आपका दोस्त आरजे परविंदर। कहते हैं कि जिहाल मिस्की मुकुन तगाफुल, दुराए नैना बनाए बतिया, किताब हिजा नदारा में जाके लेहू का हाय काहे लगाए छतिया। प्यार का नगमा है कार्यक्रम, एक प्यार का नगमा है

कहते हैं कि नए दौर के नए ख्वाब हैं, नए मौसमों के गुलाब हैं, ये मोहब्बतों के चिराग हैं, इन्हें नफरतों की हवा ना दें। आपने ट्यून किया हुआ है FM रेनबो ऐप जालंधर, एक प्यार का नगमा है।

कहते हैं कि पलकों की हद को तोड़ के पलकों की हद को तोड़ के दामन पे आ गिरा कि एक अश्क मेरे सब्र की तौहीन कर गया। FM बैंड 102.7 FM रेनबो, एक प्यार का नगमा है।

कहते हैं कि उड़ने दो परिंदों को अभी शोक हवा में, फिर लौट के बचपन के जमाने नहीं आते। कहते हैं कि अजब अंदाज में यह घर गिरा है, मेरा मलबा मेरे ऊपर गिरा है। 102.7 FM रेनबो।

यूं ही बसर तन्हा, काफिला साथ और सफर तन्हा। और कहते हैं कि हम सफर चाहिए हुजूम नहीं, एक मुसाफिर भी काफिला है मुझे। FM बैंड 102.7 FM रेनबो कार्यक्रम एक प्यार का नगमा है।

नमस्कार, एफएमएन 102.7 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी जलंधर दा रेनबो चैनल तुसीं ट्यून कीता होया। मैं तुहाडा मित्र आरजे परविंदर। प्रोग्राम चल रहा सी एक प्यार का नगमा है। अज दी सभा दे साडे सारे प्रोग्राम समाप्त होंदे ने। कल सवेरे 5:55 ते होवेगी तुहाडे नाल मुलाकात। साडे आरजेज होणगे तुहाडी सेवा दे विच हाजर। तद तक लई सानू दे इजाजत, धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय हिंद।